नमस्कार। एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी जलंधर ते एफएम रेनबो चैनल तो बोल रहे हैं। आज दिन बुधवार शक संवत 1948 दे आषाढ़ महीने की 24 तारीख तदनुसार ईसवी सन 2026 दे जुलाई महीने की अज 15 तारीख है। इस वेले सवेर के 5:58 होए ने। साढ़े अज के प्रोग्राम हुण शुरू होंदे ने ते असी अपने सारे ही स्रोतियां दा इस सभा दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

जो चलेगा 8:30 बजे तक। सवेरे 8:30 बजे पंजाबी खबरां सुन पाऊंगे ते 8:40 ते साडा खास सैगमेंट जिस विच नॉन स्टॉप पंजाबी बीट सोंग्स सुनोगे तुसी, सैगमेंट रहेगा अड्डी टप्पा। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस सवेरे 7 बजे, माफ करना सवेरे 9 बजे, और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिस विच तुसी भी अपने ऑडियो मैसेजेस भेज के व्हाट्सएप के जरिए शामिल हो सकते हो प्रोग्राम दे विच। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस सवेरे 10 बजे, और उस तो ठीक बाद प्रोग्राम गीत बहार। 11 बजे दे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस सुनन तो ठीक बाद तुहाडा मन पसंदीदा फोन इन फरमाइशी गीता ते आधारित प्रोग्राम पेश करांगे पंजाबी तड़का। एफएम न्यूज़ हेडलाइंस दोपहर 12 बजे, और उस तो ठीक बाद तुहाडे प्यारे घर नूं होर ज़्यादा प्यारा ते खूबसूरत बनाउण लई टिप्स दिंदा होया प्रोग्राम लैके हाजिर हो जावांगे होम स्वीट होम। दोपहर 1 बजे मिड डे मेलेडीज प्रोग्राम दरमियान 1:40 तो 1:50 तक पंजाबी खबरां। दोपहर 2 बजे प्रोग्राम दिलाज शायर है। 2:30 ते एफएम रेनबो दिल्ली केंद्र तो साडा खास प्रोग्राम सुन पाओगे एनसीईआरटी वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग। दोपहर 3 बजे एफएम रेनबो दिल्ली केंद्र तो ही खास प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। एफएम रेनबो जलंधर केंद्र तो शाम 4 बजे प्रोग्राम हैलो जलंधर। शाम 5 बजे युवा दोस्त लेके आएंगे प्रोग्राम युववाणी। शाम 6 बजे साडा खास द इवनिंग शो एंजॉय करोंगे लव यू जिंदगी। प्रोग्राम दरमियान 6:20 तो 6:30 बजे तक प्रादेशिक खबरां, ते मुड़ जारी रहेगा 7 बजे तक लव यू जिंदगी। ताज़ा खबरों तो जानकारी ले पाऊंगे एक बार फिर तो शाम 7 बजे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के जरिए, और इस तो ठीक बाद 7:02 ते प्रोग्राम फिल्मी दुनिया। 7:30 बजे फीफा वर्ल्ड कप 2026 दी हाईलाइट्स सुनोगे 2 मिनट दे ले। रात 8 बजे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, और उस तो ठीक बाद इन्फो टाइम्स। रात 9 बजे एक बारी फिर तो सुन पाऊंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस, और उस तो ठीक बाद तुहाड़ियां फरमाइशां ते आधारित प्रोग्राम लेके हाजिर हो जावांगे दिल चाहता है। रात 10 बजे प्रोग्राम शामे गजल, ते रात 10:30 बजे साड़ी सभा का आखिरी प्रोग्राम पेश करांगे एक प्यार का नगमा है। इस सन साढ़े अज के हुण तो लैके रात तक के प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समा, ते हुण तो कुछ कु पलां दे इंतजार ते सरवण करोंगे भगती संगीत नाल सजिया होया प्रोग्राम वंदना।

सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जो कुछ भी है इस दुनिया दे विच, इस संसार दे विच, वो सब कुदरत दा यानी कि ये परमात्मा दा ही रूप है। उस परमात्मा दे बिना इस संसार दे विच कुछ भी नहीं है। सो इंसान नू अपने मन दे हंकार नू त्याग के अपना मन उस प्रभु दे चरना दे नाल जोड़ना चाहिदा है। ते आसपास कुदरत दे बहुत सारे रूप ने जिस दे विच इंसान उस परमात्मा दा, उस ईश्वर दा दर्शन करन दे नाल नाल, गुणगान करन दे नाल नाल उस ईश्वर दी सेवा भी कर सकदा है।

इस सृष्टि नूं चलाउण वाली कुदरत दे रूप दे विच ओ मां ही है जो इस पूरी सृष्टि दी पालन करता है, सृजन करता है। और इस कुदरत, इस प्रकृति दे विच हवा दे विच, पानी दे विच, इस धरती दे विच और हर पत्ती, हर फूल दे विच ओ मां जो कुदरत दे रूप दे विच है, वो वास करती है।

जिसका ना ही कोई हां, तिसका प्रभु सोए हो। जिस मनुख दा कोई सहाई नहीं हुंदा इस दुनिया दे विच, जदों उसते औकड़ां आउंदियां ने, मुश्किलां आउंदियां ने, ते प्रभु हमेशा उस इंसान दी रक्षा करदा है जो सच्चे मन दे नाल बाकी जीवां दे काम आउंदा है। मन, वचन, कर्म दे नाल हमेशा सच्चाई दे रस्ते ते चलदा है।

सो जी नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अ वेरी वेरी रिफ्रेशिंग हैप्पी पॉजिटिव वेंसडे मॉर्निंग। बुधवार दी प्यारी जी खुशनुमा जी सवेर दे विच तुहाडा सारयां दा स्वागत कर दिया। मैं तुहाडी दोस्त जो माइक दे इस पार बैठी हुई है, एनर्जी दी पावर डोज पूजा टोहानी। सो वेलकम बैक भाई। सवेर तो आपा थोड़ा जा भगती भावना वाला माहौल सी, है ना, डिवोशनल प्रोग्राम आपा सुन रहे सी, सरवन कर रहे सी। सो मैनू लगदा हर दिन दी शुरुआत जिवें आकाशवाणी एफ एम रेनबो दे नाल हुंदी है ना, परमात्मा नू ईश्वर नू याद करदे होए। ऐदा ही जरूरी नहीं है कि जदों मैं आवां उदों ही ऐदा दी शुरुआत होवे। मतलब हर दिन दी शुरुआत चाहे असी इकट्ठे होइए ना होइए, परमात्मा नू याद करके एक पॉजिटिव डोज दे नाल ते कर सकदे आ ना। बस इसी थीम ते आकाशवाणी काम करदा है, जिथे खुशनुमा सवेर हुंदी है प्रभु दे नाम सिमरन दे नाल। सो फिलहाल टाइम हो चुका है सवेर दे 7:05 पूरे 5 सेकेंड, और ये टाइम है जी तुहाडे फेवरेट वाले शो दा, जिस विच हुंदी है इनफॉरमेशन दी एंटरटेनमेंट दी फुल ऑन डोज। हाँ जी, टाइम हो गया है तुहाडे ते मेरे फेवरेट शो दा, गुड मॉर्निंग जलंधर दा। गुड मॉर्निंग जलंधर, जिस विच इनफॉरमेशन एंटरटेनमेंट ते खूब गल्लां बातां दा सिलसिला मेरे नाल चलेगा 8:30 तक। मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि गाने भी तो मैं अलग अलग वधिया वधिया सुनावा, और इनफॉरमेशन भी इदा दी अलग अलग ही तुहानू वधिया जिक दवा सुन के याद रवे। मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं, हल्किया फुल्किया गल्लां, लेकिन उन्हां दे विच वजन होएगा इनफॉरमेशन दा एंड एंटरटेनमेंट दा। ज़्यादा भारी लैक्चर नहीं मैं दूंगी, ओके। सो मिड वीक है, बुधवार है भाई, हफ्ते का मिड है, तो बहुत सारी प्लानिंग्स साढ़े कोल भी होगी किवें किवें आप हफ्ता बिता चुके हैं या बिताना है। लेकिन मेरे को आज दी प्लानिंग है 8:30 तक गुड मॉर्निंग जलंधर, 8:30 सुनोगे पंजाबी खबरां, 8:40 तो 9 तक पंजाबी बीट सॉन्ग्स इंजॉय करोंगे नॉन स्टॉप मेरी इंटरप्शन तो बिना। ठीक 9 फिर मेरे तो ही सुनोगे FM न्यूज़ हेडलाइन, और फिर उस तो बाद तुहाडा ते साडा फेवरेट वाला प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी, जिस विच तुसी भी

मैं भी तुम्हें एक गल सुनाई दिनी हाँ भाई। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 यानी 2026 जो चल रहा है जी, फीफा वर्ल्ड कप 24 साल बाद इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना आपस दे विच पिड़नगे 24 साल बाद। तो सेमीफाइनल है और आज आप कह सकते हैं कि मेसी दे सामने हैरी केन, यानी कि बिलिंगम दी डबल चुनौती होएगी। और जिथे सारे की नज़र लियोनल मैसी ते होएगी, हैरी केन बेलिंगम ते भी जो कि 32 साल दे ने, उन्हां ते भी बहुत सारे दी नज़रां ते उम्मीदां ने। सो अज दूसरा सैमीफाइनल है जो अज खेडिया जाएगा, डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना दा सामना इंग्लैंड दे नाल होवेगा। ते फुटबॉल दे सब तो वड्डे मंच ते पूरे 24 साल दे बाद ये आपस दे विच पिड़नगे। देखदे आ की बनता है, कौन जीतता है ते कौन सबक लैंदा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर कोई हर मैच जीते ही। कुछ हारां सानू जिंदगी च बड़ियां चीज़ां सिखा के भी जांदियां ने।

वेलकम बैक वंस अगेन पूजा टोहानी यानी कि मेरे नाल एंजॉय कर रहे हो तो गुड मॉर्निंग जलंधर तुहाडे ते मेरे फेवरेट वाले रेडियो स्टेशन एफएम रेनबो ते जो है दिल से दिल तक एंड एब्सोल्युटली लाइव क्योंकि लाइव है तो लाइफ है। हाँ जी एक चीज और लाइफ दे विच ना हेल्थ बहुत जरूरी है। जो साड़ी सेहत खराब है तो मैनू नहीं लगता कि असी पैसे का कोई इंजॉय कर पावांगे, ना घूमन नू जी करूगा ना सोहने सोहने बनन नू जी करूगा। रेपुटेशन भी ठीक है कितने ना कितने रहती है एक साइड पर थोड़ी जी पासे जी लगी कॉर्नर पर लगी, पर जो सेहत ही नहीं ठीक मैनू दसो फिर किदां गल बनूगी। इस करके सेहत ठीक रखनी साढ़े हाथ च हुंदी है। और एक छोटा जि इनग्रीडियंट है बहुत ही मासूम जहा बड़ा क्यूट जहा गोल मटोल जहा इनग्रीडियंट है सारे के घर होंगे किचन के काली मिर्च। काली मिर्च के नाल ना इदा की ही एक सफेद मिर्च भी होंगी है जिदा की काली होंगी है इदा की ग्रे जी कलर के होंगी है जिसनों वाइट पैपर कह देंगे ने। फायदे इन्नी ज़्यादा भरपूर है ना वो फायदे ही फायदे ने। सो मैं लगता कि सानू जो भी असी हल्दी का इस्तेमाल करते हैं असी गलती ये कर लें कि वो काली मिर्च नहीं पाने चाहे असी हल्दी वाला दुध जो पीने। सो करक्यूमिन एक्टिवेट करता है काली मिर्च के जड़ा फ्लेवोनॉइड पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट भी होंगे ने काली मिर्च के बहुत सारे वाइटमिनस भी होंगे ने सफेद मिर्च के भी। सो तुहाडे कोल अगर सफेद मिर्च मतलब सफेद काली मिर्च या काली मिर्च हैगी है इस नू जरूर इस्तेमाल करो क्योंकि हुण बरसात का मौसम आ गया है गर्मी ऑलमोस्ट बाय बाय कर चुकी है। सो इहदे विच अपनी इम्यूनिटी नू ठीक रखना हैल्दी रखना और मजबूत रखना सिर्फ तो सिर्फ साढ़े हाथ दे विच है। वैसे भी कईयों के गले दे विच खराश हो रही है या कुछ है तो थोड़ा जिहा शहद लैके उन्हूं गर्म नहीं करना हुंदा शायद वरना वह टॉक्सिक हो जाता जहरीला बन जाता। हल्का जिहा गुनगुना करना है और उहदे विच तुसीं थोड़ा जिहा अदरक का कुछ बूंदा रस पा सकते हो और थोड़ी जी काली मिर्च पा के जो गले की खराश है इदां दे बदलदे मौसम दे विच हो जाती है खास करके गोलगप्पे खाने नाल आइसक्रीम खाने नाल उस तो मिलती है राहत। ये सर्दी खांसी कफ जुकाम बुखार ठीक हो जाता है क्योंकि काली मिर्च और ये जी छोटी भैन है वाइट पैपर सफेद मिर्च ये जो फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं और एंटीबायोटिक गुण गर्भे शरीर के थोड़ी गर्मी पैदा करते हैं तो सर्दी यानी कि ये बदलते हुए मौसम के जोड़ा सूँ कोल्ड कफ हों उस निजात पाने साड़ी करते हैं हेल्प। बस बहुत हो गई गल् इनफॉर्मेसन जल्दी दे नाल गाना एंजॉय करो क्योंकि गाने तो ठीक बाद डिस्कशन होएगी साढ़े आज दे खास मेहमान दे नाल विश्व युवा कौशल दिवस ते।

0: वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक एंजॉय किया तो एफएम रेनबो ते 102.7 103.6 एंड ऑन न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप ते सुन रहे हो तुसी बिल्कुल लाइव गुड मॉर्निंग जलंधर मेरे यानी कि आरजे पूजा टोहानी दे नाल। सो टाइम हो गया है 8:01 और पूरे 18 सैकेंड और टाइम हो गया है साढ़े आज दे खास मेहमान नू प्रोग्राम दे विच इनवाइट करन दा। सो सब तो पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर रुपिंदर कौर जी का। हैलो
1: जी मैम, धन्यवाद जी, धन्यवाद
0: जी मैम, बहुत बहुत स्वागत एंड वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है तुहाडा गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच मैम।
1: सो
0: लिसनर नूं दस दईए कि डॉक्टर रुपिंदर कौर जी जो कि एसोसीएट डायरैक्टर ने स्किल डिवेलपमेंट सेंटर PAU लुधियाना दे विच अपने सर्विसिज दे रहे हैं और अज विश्व युवा हुनर दिवस से खास साडे लिसनर्स नूं जानकारी देण लई आए ने मैम। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत करदे प्रोग्राम च।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
0: ਜੀ,
1: ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ
0: ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯੂਥ ਸਕਿੱਲਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁਵਾ ਹੁਨਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਿਨ?
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਯੂਥ

वेलकम ब्याक, बहुत बहुत स्वागत इस वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक तो बाद। और वैसे सीखने ते हर चीज तो सीखा जा सकता है, पर जेकर पेड़ों की पाठशाला दे जरिए सीख के बच्चे नु प्रकृति दे नाल जोड़ा जावे तो आइडिया किदां दा लगा तुहानू? भाई देखो, अजकल दे बच्चों नु कारां दे नाम, उन्हां दे ब्रांड्स दा नाम तो बहुत पता है। मतलब खास करके बच्चों नु कारां दे महंगे महंगे ब्रांड्स दे नाम जिहड़े कि याद करने भी औखे ने, वो बहुत ईजीली प्रोनाउंस कर लैंदे ने। लेकिन आस पास जिहड़े साडे दरखत ने, पेड़ ने, उन्हां दे नामां दा उन्हां नु पता ही नहीं है। सो यही सोच के एक IRS अधिकारी रोहित मेहरा ने ते उन्हां दी पत्नी गीतांजलि ने पिछले साल 2025 दे विच दिल्ली दे किदवई नगर दे विच मुफ्त दे विच पेड़ों की पाठशाला शुरू कीता है। और इसे लई शुरू कीता गया है ताकि बच्चों नू प्रेरित कीता जा सके। हर वीकेंड ते 45 बच्चे बैठ के पेड़ां दे विच बैठ के सीखते ने विज्ञान, पर्यावरण ते किस तरीके दे नाल टिकाऊ जीवन शैली जीनी है, एनवायरमेंट दे नाल, कुदरत दे नाल जुड़ी हुई जिंदगी किवें जीनी है। और किताबां दी बजाए उन्हां बच्चियां नू पत्तियां नू छू के, टच करके, देख के, महसूस करके उन्हां दा नाम दस्या जांदा है, उसदे फायदे, उसदे गुण दस्से जांदे ने। और इन्ना ही नहीं, बच्चियां नू ज़्यादा तो ज़्यादा पौधे लगाने के लिए इंस्पायर भी करते हैं। और हुण तक 200 बच्चे ते उन्हां दे पेरेंट्स 250 पौधे लगा चुके ने। मैनू पता है कि शहरां दे विच जगह की बहुत वड्डी दिक्कत आती है कि तुसीं कहिंदे ते है पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, जगह कित्थे है? बस यही एक टास्क हुंदा है, लभना है ते काम करना है, बाकी फिर सारे काम हो जाते हैं। लेकिन थोड़ा जिहा मेहनत सानू लभण ते करनी पैंदी है। लेकिन एक चीज़ होर, मेहनत करते करते ये ना भूल जाइए तुम कि अगर तुम ड्राइव करते हो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करो। हाँ जी, जी सामने ट्रैफिक लाइट है ना, कह रही है कुछ रेड का मतलब होंगे खतरा, सो उन्होंने पार नहीं करना होंगे, उत्थे रुकना होंगे है। सो ये साड़ी नंबर वन रिस्पोंसिबिलिटी है वाइल ड्राइविंग। सो अगर कार दे विचो फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हो, सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करो। और जल्दी जल्दी दे विच अपनी ब्रेकों को थोड़ा जहा लगाम लगा लो, क्योंकि ये ब्रेकों जो नहीं लगाते ना, अपना काम नहीं खराब होता, बाकी का काम भी खराब होता होंगे। सो इस करके ब्रेक्स के नाल थोड़ा जहा पैचअप और गलबात बना के रखो, और इन्हों का इस्तेमाल करना होंगे है। इस तों इलावा ज़्यादा तो ज़्यादा पौधे लगाओ, और जल्दबाजी दे विच ये ना भूलो कि बाकी रोड तो निकल के जड़ा रिस्पॉन्सिबल रोड बिहेवियर है, ये साडे लिए बहुत जरूरी है। इसी नोट पे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर नूं इत्थे ही वाइंड अप कर रही हैं। जा मैं किते नहीं रही, सिर्फ प्रोग्राम वाइंड अप कर रही हैं, और तुसी FM रेनबो ते ट्यून इन किते हुए रहना है, क्योंकि अगे 8:30 बजे सुनोगे खबरां ते 8:40 तो 9 बजे

Back back to back Punjabi songs. और फिलहाल लास्ट ट्रैक दे नाल गुड मॉर्निंग जलंधर दा सफर तुहाड़े नाल मेरा आज इना ही सी, लेकिन वैसे सफर तुहाड़ा मेरे नाल ठीक 10 बजे तक चलता रहेगा।

म्यूजिकली योर्स एंड ओनली योर्स। और फिलहाल 8:40 हो गए ने, तिवेला हो गया है तो हाडे मन पसंदीदा प्रोग्राम अड्डी टप्पा दा, जिस विच तुसी मेरी इंटरप्शन तो बिना बैक टू बैक पंजाबी बीट सॉन्ग्स सुनोगे। तो शुरू करते हैं अड्डी टप्पा दे सफर जो चलेगा ठीक 9 बजे तक। सो आ रहा है जी पहला ट्रैक अड्डी टप्पा दा।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जा वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 के तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अपलाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: मेरी वाइफ अनुदेवी
1: जी,
0: मेरे दो बेटियां भारती आरती और संदीप,
1: ओके,
0: असी सारे ही बड़े चा नाल पहला अपना पंजाबी प्रोग्राम सुनते हैं
1: जी। शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: सारे पासे ग्रीनरी, हरे हरे पेड़ पौधे फुल और पहाड़ा वालिया वादिया का जो नज़ारा देखने मिल जाता रूह में कितना सुकून जहा मिलता है ना। अगला मैसेज आया है, दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम पेश कर रही ती राणी पूजा टोहानी जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मेन बाजार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर, रजिंदर कौर हठूर, दिलो दुआवां पुत्रा तेरे लिए, हर विश तेरी पूरी होवे, खुशियां तेरे अंग संग रहन, कदी सुखां तो ना दूरी होवे, सदा तरक्कियां मिलन तैनू असी हमेशा दुआवां करदे हां, तेरी उम्र वाहिगुरु जी लमेरी करन, असी तेरे एडिशनल SDO बनन ते ये दुआ करदे हां, और वाहिगुरु जी की रहमत मेहर सदका पुत्र अमनदीप सिंह जी की तरक्की हो गई, एडिशनल SDO बन गए ने जी। बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत बहुत मुबारक। अगला मैसेज आया है, मापियां की सब तो वड्डी सिक्ख्या ये सी रोटी बनाउणी भी आउंदी होवे ते रोटी कमाउणी भी आवे ते घर नूं घर बनाउणा भी आउंदा होवे। बिल्कुल जी, ये सब तो कीमती कह सकते हैं आपां कि सिख्या है। गुड मॉर्निंग तूफानी RJ पूजा टोहानी, तुहाडा सदा ही मुस्कुराते रहो, बाबा जी ब्लैस यू ऑल द टाइम। थैंक यू जी, थैंक यू। एक मैसेज कर रही हाँ, घर नहीं सी तां करके लिख नहीं सकती, पिंड थम्मण वाल फिलौर जलंधर तो कमलप्रीत। मैनू पता लग गया सी जी तुहाडा मैसेज है तूफानी वाले स्टाइल च। थैंक यू। अगे मैसेज आया है जी मेरे कोल, तुसी बहुत प्रोग्राम बहुत ही वधिया चला रहे हो जी, मैं विशाल मुंबई तो लोकल दे सफ़र दे विच, अच्छा लोकल ट्रेन दे सफ़र दे विच रोज़ दिल अपना पंजाबी सुन लेता हूँ। अब पंजाबी अच्छे से समझ में भी आती है, बहुत ही प्यारी ज़ुबान है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जी, तुसी मुंबई की लोकल ट्रेन च बैठे बैठे दिल अपना पंजाबी सुनते सुनते पंजाबी सीख गए हो। सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया जी। विशाल केलकर होरा ने मुंबई तो सानू ये मैसेज भेजा है, दिल तो बिग वाला थैंक यू कर रही है जी तुहाडा। अगला मैसेज भी जरूर सुनाऊंगी तुहानू, लेकिन एक मैसेज आया है जी साडे कोल, साडे कोल मैसेज आया है जी पुनीत कपूर होरां ने सानू पटियाले तो भेजा है मैसेज कि इन्हां दे बहुत ही खास मित्र गर्ग साहब होरां दा जन्मदिन है ते उन्हां नू बहुत सारियां ढेर सारियां विशेस दे रहे ने, और यही कह रहे ने कि परमात्मा उन्हां दी उम्र बहुत ही लंबी ते तंदरुस्ती वाली करन, ते असी भी बहुत बहुत दुआ करदे हां जी तुहाडे ते तुहाडे परिवार नू हमेशा परमात्मा अपना आशीर्वाद देवे। सो जन्मदिन दीआं मुबारकां भेज रहे ने जी पुनीत कपूर जी गर्ग साहब होरां लई। सो इस दे नाल ही मैनू लगदा कि टाइम हो गया हुण प्रोग्राम दे विच अग्गे वधण दा, क्योंकि अगे वधदे वधदे एक चीज़ मैनू समझ आई कि बाकी गल्लां दीआं गल्लां, लेकिन चाह तो बिना ना जिहड़ा काम वो चलदा नहीं है। मैनू इदां लगदा क्योंकि गले नू चाह दा कप ना थोड़ा जिहा आराम दिंदा, ते मैनू लगदा नहीं कि चाह दा कोई सब्सटीट्यूट हो सकदा है। सो जल्दी दे नाल मैनू लगदा कि हुण चाह वाला गाना आपां सुण ही लैने आ। तैयार है जी प्रोग्राम दे विच अगला गीत, पहला आपां इदां करदे आ चाह दा कप प्रिपेयर कर लैने आ ते फिर आपां चाह दा कप पी भी लवांगे, की कहिंदे हो तुसीं? मैनू लगदा कि प्रिपेयर हो रहा है, ते लो जी प्रिपेयर हुंदे हुंदे चाह दा कप रेडी है, इंजॉय करदे आ नाल दी नाल गाना ते चाह दा कप।

0: तू फुल ते मैं टाणी कोई ना खिल भी जावांगे बस तू अरदासा करया कर आपा मिल भी जावांगे आपा मिल भी जावांगे।
1: मिलती जाऊंगी अरदास भी करनी पैंदी है क्योंकि कई बारी बंदा ना कोशिश बड़ी करता प्लान भी बहुत करता है लेकिन वो प्लान पूरे नहीं हो पाते तो मैनू लगता कि उदो फिर इदां दे टाइम ते अरदास ही काम आती है। रुख साड़ी जिंदगी का एक अहम हिस्सा ने रुखां तो बिना जीवन संभव नहीं है ये साढ़े जीवन का अनमोल तन ने एक कुदरत वालों मिलिया अनमोल तोहफा है। साढ़े जीवन विच रुखां ते असी निर्भर करते हाँ साढ़े जीवन विच रुखां का बहुत महत्व है। साड़ी जिंदगी दे बहुत सारे पक्ष भी रुखां ते निर्भर करते हैं इन्हां तो मनुख दीआं लोड़ां दी पूर्ति हुंदी है मनुख दी मुढ़ली लोड़ है कुल्ली गुल्ली ते जुल्ली रुख साड़ियाँ इन्हां तिन्नां लोड़ां दी पूर्ति करते हैं। और ये मैसेज सानूं भेजे है पाली प्याला होरां ने होशियारपुर तो काफ़ी होशियार हो तुसीं जी। और इस नाल ही प्रोग्राम दे विच तुसी भी अगर मैसेज करना चाहते हो तो जल्दी दे नाल चको अपना फोन 9855 10 10 27 यानी कि 9855 10 10 27 ते भेज सकते हो मैनु मैसेज। मनजीत सिंह बदन होरा ने भी सानू मैसेज भेजा है कि दस खां कली के जोटा बोल खां कली के जोटा माही दिल दा खोटा खोटा कली के जोटा जोटा मैं कहा ले चल मेले मैं कहा ले चल मेले अखे पल्ले पैसे ना तेले दिल मेरा रोया टोटा टोटा कली के जोटा जोटा ना बोला प्या वाजा मारे ना बोला प्या वाजा मारे मनावे तेनू ते लावे लारे लवा दिता चुन्नी नू गोटा कली के जोटा जोटा सिर करजा उस दस्या इको पुन्या ते मस्या मैं भी कुछ सोचा माड़ा मोटा कली के जोटा दुख दर्द सारे पुले उठ के अग पाई चुले अज लगे सोने दा आटा कली के जोटा जोटा पा लिया सूट मैं सूहा हो अगे खोलिया बूहा मैं ते माही इको मिक्के पोटा मैं ते माही इको मिक्के पोटा कली के जोटा जोटा। तो पिंड बद्दोवाल लुधियाणा तो इन्होंने भेजी सी मनजीत सिंह बदन होरां ने बहुत ही प्यारी जी ये लिख के सानू जो भी सी ये कविता सी बोली सी रचना सी जो भी सी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो मैनू लगता कि हुण प्रोग्राम दे विच अगला गीत भी आपां सुन लईए। बहुत सारे दोस्तों ने ऑलरेडी सानू मैसेज भेजे ने कुछ भेज रहे ने ते मैनू लगता कि हुण नाल दी नाल गल्लां दे सिलसिले दे नाल

0: सो डांसिंग इन द सन. वैसे ना सन दे विच तो बहुत घट लोग ही डांस करते नहीं, रेन दे विच मैं बहुत सारे लोगों ने देखा डांस करते हुए है ना. फिलहाल ना रेन हो रही है ना डांस हो रहा है, मैनू भी नहीं पता की कुछ चल रहा है लाइफ च. सो उम्मीद आई सी कि जी मानसून बहुत वधिया आएगा और जो रेनी सीजन स्टार्ट होंगे ना दिल के विच छोटी छोटी उमंगा जिड़िया जाग जांदियां ने कि आपां भी और रेनी सीजन नू इंजॉय करांगे छोटे बच्चे बन के. वो जो आप छोटे होंगे सी कश्ती चलाते सी है ना कागज़ की बना के ते डांस करते सी. फिलहाल वो वाली डेज मैं मिस कर रही हूँ. तुसी देखो तुसी अपने रेनी डेज कोई याद होगी तुहानू है ना जो तुहानू भी याद आ रही होगी और उसनू याद करके तुहाडे फेस ते एक छोटी जी या वड्डी जी स्माइल भी आ सकती है. और स्माइल आगे तो स्माइल करो उहदे नाल ही नाल अलग लगाना भी इंजॉय करो जी. प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार ओनली ऑन 102.7 FM रेनबो दिल से दिल तक.
1: नहीं जीना तेरा बिना रे.

पूछ रही हो कि रिचा की जा रही है ऐसी कैसी, कश्मीर गई है ना, कश्मीर नहीं गए तो कन्याकुमारी गए होंगे। चलो मैं कह रही हूँ जरा उत्थे भी नहीं गए हो, ता जिधर मर्जी है ना, जिथे भी गए हो तुझे लास्ट अपनी वेकेशन ते बस 5 मिनट उसनों याद करो और पहुंच जाओ उस जगह ते वापस, और जिदे नाल भी गए सी बस उन्हों भी नाल ही ले लो। अरे अखा दे विच हुण नाल ता बंदा बैठा नहीं होना है ना जी। सो वो जिहड़ियां यादां ने ना अपनी अखां दे सामने एकदम मैमोरी फ्लैशबैक हो जांदियां ने, और उदों जदों आपां याद कर रहे होंदे आ तां बड़ा ही वधिया लगदा है ना, दिल करदा दोबारा छुट्टी लिए फटाफट ऑफिस तो। लेकिन सर नूं पता है कि अजे अजे छुट्टी तो वापस आया जनाब, इन्नी जल्दी छुट्टी नहीं मिलनी है। लेकिन छुट्टी नहीं मिलनी है, सुपने जिहड़े ने उहनां दे विच तां आपां पहुंच ही सकदे हैं ना। सो बहुत ही ज़्यादा जिहड़ी इक स्पीड हुंदी है ना, अपने मन दी स्पीड हुंदी है, और उस तो भी ज़्यादा फास्ट हुंदी है जी अपनियां आईज़ दी स्पीड है ना। सो चलो चलो चलो चलो लास्ट वेकेशन वाली एक वधिया जी मैमरी तुसी याद करो, तो मैं अपना अगला गीत याद कर रही हूँ, तो याद करके दोनों इंजॉय कर रही हैं जी। 102.7 FM रेनबो दे प्रोग्राम चल रहा है जी, गीत बहार, स्टे ट्यून्ड।

मेरे सवेरे देखो एक वाइब तो होनी चाहिए है जरूर, जिनिया मर्जी टेंशन हो है ना प्रॉब्लम हो जो मर्जी हो, लास्ट नाइट जो कुछ भी साढ़े नाल होया सारे नु पासे रखे ना, एक जी वाइब है ना वो जरूर आनी चाहिए है मॉर्निंग दे विच। और आई थिंक वो जी वाइब है ना वो आती है जी म्यूजिक दे नाल, संगीत दे नाल, आवाज़ दे नाल, किसी दी भी मतलब कोई भी थोड़ी हो सकती है फेवरेट आवाज़ हो है ना जी। सो मैं पहली कह रही हूँ स्टूडियो के विच वाइब पूरी सैट है और मैं अज रिचा थोड़े नाल इंजॉय कर रही हूँ, तुसी मेरे नाल इंजॉय कर रहे हो जी, मिल गए आप इंजॉय कर रहे हैं ये सफर, केड़ा सफर, गीत बहार का सफर। और प्रोग्राम गीत बहार दे विच समा हो गया जी अगले गीत का। सो मैंने पता अगला गीत ना मेरा वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग है और हो सकता है बहुत सारे दोस्त इस गीत मेरे नाल मिलकर इंजॉय करने वाले ने। सो रहना मेरे नाल ट्यून इन, मैं थोड़े नाल हाँ जी, तो साढ़े दोवे नाल अगली आवाज़ मीका सिंह, इंजॉय कर दिया जी नैक्सट ट्रैक दिल से दिल तक जी।

वैसे किसी होर दा तां पता नहीं, पर हाँ जदों दो भैणां इकट्ठे मिल के गल्लां गूड़ियां कर रही हो ना, तो समझ जाना कि चुगलियां हो रहियां ने और डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इस करके थोड़ा जा दूर रहो, है ना, टाइम दो। सो इंजॉय करो जी प्रोग्राम तुसी गीत बहार। और 10:39 हो चुके ने और मैनू पता इस टाइम बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी ट्यून इन करके प्रोग्राम सुन रहे हैं और कुछ लोगों को इंतजार है 11 बजे का कि कदों 11 to 12 प्रोग्राम पंजाबी तड़का दे विच अपनियां फरमाइशां दा तड़का जिहड़ा ना वो लगावांगे और साडे तक पहुँचणगे जी। 0181-2342-174 नंबर मैं पहले ही अनाउंस कर रही हूँ और कोशिश करांगे कि आज फिर एक बार नवे नवे दोस्तों प्रोग्राम से शामिल करिए। फिलहाल शामिल कर रही हूँ प्रोग्राम से अगला गीत, क्योंकि चल रहा है जी गीत बहार प्रोग्राम और रिचा थोड़े नाल जुड़ी हुई है जी। स्टे ट्यून्ड दिल से।

दूर हो जाए, किसी दी स्माइल देख के हो सकता है साडा जिहड़ा स्ट्रेस है ओह दूर हो जाए। सो बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ने अपनियां प्रॉब्लम्स नूं दूर करन लई, लेकिन उहदे लई किसी नूं प्रॉब्लम च नहीं पाना फायदा है। फिलहाल मैं तुहानूं किसी प्रॉब्लम च नहीं पा रही हां, मैं तुहानूं इंजॉय करा रही हां जी। अगला गीत अनु मलिक ते नेहा कक्कर दी आवाज़ च प्रोग्राम गीत बहार दा, नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

क्योंकि देखो मॉर्निंग मूड है ना सेट होना चाहिए है ना, खुशी होनी चाहिए फेस से, और जो अपने सोने सोने गीत सुनते हैं गाने इंजॉय करते हैं उदो एक वक्री जी स्माइल मुस्कुराहट साढ़े सारे के फेस से आ ही जाती है। सो अगला गाना नॉट ओनली योर फेस ये है जी थोड़े पूरे दी पूरी बॉडी ले क्योंकि इंजॉय करोगे तुम, मैंने पता है जो ठुमके ने ना वो निकलन वाले ने, सो इंजॉय करते हैं जी अगला गीत सुनूंगी जोहान की आवाज़ के विद स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

0: देख ले समथिंग तुझ में नॉट राइट है।
1: मैं तो पहले कह रही थी जी शीशे जो अपने आप नू देखो और जड़ी स्माइल है ना वो तुम देख के आ ही जाएगी। फिलहाल स्माइल करते करते जड़ी जर्नी है और प्रोग्राम गीत बहार तुसी एंजॉय कर रहे सी और इस प्रोग्राम नू आप आए थे टाटा बाय बाय वाइंड अप कर रहे हैं। लेकिन रिचा कितने भी नहीं जा रही है, मेरा ते थोड़ा साथ जुड़िया होया जी दोपहर के 2 बजे तक। सो इंजॉय करते रहो प्रोग्राम द लास्ट गीत, उस तो बाद 11 बजे फिर मिल रही हूँ तुम सिर्फ इतने स्टे ट्यून्ड।

सो म्यूजिकली आवाज आकाशवाणी एफ एम रेनबो, खुशियां दा खजाना वंडा लाइव रेडियो स्टेशन, और दिल तो दिल वाल जिहड़ा कनेक्शन है जी, तुसी इंजॉय कर रहे हो अज मेरे नाल। कौन है साइड? रिचा दे नाल इंजॉय कर रहे हो तुसी अज दा ये सफर। और रिचा दे नाल कौन कौन दोस्त जुड़नगे, देखो उन्हां दा नाम की है, ये तो मैनूं उदों ही पता लगेगा जदों तुसी मेरे नाल जुड़ के अपनियां जिहड़ियां फरमाइशां ने ओह अज मेरे तक पहुँचाओगे, और गलबात भी करांगे। खास दिन है और उस खास दिन ते खास गलबात होनी चाहिए है। चलो चलो चलो कर लो सर्च, मौका दे रही हूँ तुहानू। पहला प्रोग्राम पंजाबी तड़का की शुरुआत कर रही हूँ और इस गीत की शुरुआत कर रही हूँ, और उस तो बाद देखते हैं कि अज साडे नाल कौन पहले कॉलर जुड़ जाएंगे। 0181 2342 174 नंबर डायल करके। सो फिलहाल अमृतर गिल की आवाज़ आ रही है जी, इस गीत को इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: सो ग्यारह बज के 12 मिनट हो चुके हैं जी, प्रोग्राम पंजाबी तड़का चल रहा है और एक और दो साढ़े नाल 01812342174 नंबर डायल करके कौन जुड़े ने। हेलो सत श्रीकाल जी, कौन दोस्त जी? कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च, वधिया हाल चाल? चलो थोड़ी फरमाइश मैं पूरी कर रही हूं और कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो इन्हां दी फरमाइश ते चंद परदेसी गीत जिहड़ी फिल्म आ उहदा गीत आपां सुन रहे हैं, जागो है ना जी, सुन रहे हैं। चलो चलो चलो आ गई, जागो हुण इहनूं सुण के तुहानूं भी अपने किसी जागो की याद आ गई होगी जिथे तुसीं अपनी स्किल्स का प्रदर्शन किया होना है, हुनर तुहाडे कोल डांस का हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना जी। सो उहनूं तुसीं याद करो ते मेरे नाल प्रोग्राम च जुड़ जाओ जी, स्टे ट्यून्ड।
1: कच्ची नींद ही छा गई, खसमां नूं खाणियों तुसीं किते महाराज दी सवारी लई फिरदियां।

0: मैं कहा जी पूरी जागो वाली फीलिंग सी ना, ओ आ गई है, लग रहा है जिवें व्याह हो रहा है जे एफएम रेनबो दे वेड़े। फिलहाल व्याह वाली फीलिंग, खुशियां वाली फीलिंग हमेशा ही इत्थे रहिंदी है, क्योंकि सुन रहे हो तुसीं खुशियां दा खजाना वन दा लाइव रेडियो स्टेशन 102.7 एफएम रेनबो। और एक दोस्त साडे नाल जुड़े ने। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: सत
0: श्री अकाल।
1: की हाल
0: है? बहुत वधिया।
1: हंस
0: के भी दिखा दो हुण। अच्छा, ए ए इदा वाला हा, कई लोग इदा भी हसदे ना जी, आवाज ही नहीं आंदी हसण दी, है ना?
1: हां जी,
0: हुण तुहानू मेरी आवाज आई, तुहानू पता मैं किन्ना हसी। ठीक है ठीक है। की नाम है जी तुहाडा? संदीप जी।
1: संदीप सिंह
0: जी। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी आज देखो किन्ना सोहना दिन है, अज है ना जी विश्व जड़ा युवा हुनर दिवस है, स्किल्स डे है अज, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। सो संदीप जी दसो तुसी अज की कहना चाहोगे इस खास दिन बारे?
1: इस दिन बारे हुनर कोई ना कोई होना चाहिए
0: सारे, सारे च कोई ना कोई होना चाहिए, तुम्हारे च कोई है?
1: सोशल मीडिया
0: ते आईडी बनानी होवे ते जुड़वा दी, सोशल मीडिया ते
1: फोटो
0: खो गए लभ सकते हो बहुत जरूरी है बच्चा च पढ़ाई
1: होना
0: तो चाहिए जिम्मे कि थोड़े को। चलो ठीक है, चीजा लभन का हुनर मेरे ख्याल बड़ा ही वधिया एक हुनर है ना। चलो गीत केड़ा सुनना है तुसी?
1: गीत सुना दो, निमृत खैरा दा कोई।
0: निमृत खैरा दी आवाज़। ओके जी, कॉल करने के लिए शुक्रिया। और निमृत खैरा जी आ रहे ने साडे रेडियो स्टेशन, कह रहे ने यार मेरी आवाज़ सुनो, तो उस तो बाद अगले दोस्त की आवाज़ आप सुनेंगे स्टेडियो। पंजाबी तड़का प्रोग्राम का नाम है जी दिल से दिल तक।

0: एक अंदाजा तो चलो हुण मैं भी लगा रही हूँ कि अगले दोस्त का नाम होएगा एस्तो। हेलो
1: हेलो जी, मेरा नाम शिवाजी नगर तो गाल करता।
0: तुम्हारा नाम की है?
1: शिवम जी।
0: शिवम, देखो मैं क्या, अगले दोस्त का नाम होएगा एस्तो। वाह, देखा मेरा हुनर है, तुम्हें पता है
1: कुंभ राशि पहचान जाती, देख लो जी।
0: शिवम जी जलंधर तो गल कर रहे हैं, की हाल चाल है थोड़ा?
1: बस ठीक ठाक मैडम जी, आप सुनाओ?
0: बहुत वधिया, बहुत वधिया। ते की कहोगे तुसी अज दे टाइम च नौकरियां दे नाल नाल? देखो नौकरी लै रहे हैं आपां हुण, अजकल सरकारी नौकरियां तां मिल नहीं रही हैं, देखो किसे नूं है ना, हर कोई तलाश तां करदा है, मेहनत बहुत करनी पैंदी है, पर तुसी की मानदे हो कि स्किल्स दा होना, हुनर दा होना जरूरी है ना?
1: मैडम जी आपां बुटीक ही करने आ, जिहड़ी सूट देने आ कभी पाक।
0: अच्छा,
1: कभी केड़ा?
0: मतलब
1: आपां मैकेनिकल ले हाथ रखी दा ठीक हो जाए, बिजली कर
0: ठीक है ठीक है। सो हुंदा है वैसे हर, देखो ये भी हाथ का हुनर ही है ना, जो आपां कोई सूट स्टिच कर रहे हैं ये हुनर ही है, क्योंकि देखो ये पढ़ाई तो कम आई रही है, लेकिन ये जो हथा हुनर है ना, ये अपनी गलबात होंगी है, ये करके देखो असं अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं।
1: देखो जी, ये भी हुनर, कोई चीज खराबी पई हो, मान लो जूते टूटिया जल्दी जल्दी है, कुत्ते वारा लगे वे छोटे छोटे करते, वे वे काले रंग दे, उन्होंने दुध पा दो जल्दी जल्दी, अगले खुश हो जाते, देखो जी वो पिछे नहीं पेंदे बंदे।
0: अरे बड़े सोहने सोहने हुनर ने तुहाडे कोल। शिवम गाना केड़ा सुनोगे? मेरे नाल गल बात करने लई जुड़ जाओ जी। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

की आएगी, है ना। सो प्रोग्राम होम स्वीट होम की शुरुआत कर रही हूँ जी मैं और राज दे पिटारे दे विच भी बहुत कुछ खास है और की कुछ खास है ये जानना है तो फिलहाल इस अगले गीत में सुनो। पहला प्रोग्राम दा एक गीत सुन दिया तो उस तो बाद नोटबुक पेन नोटबुक जो कुछ तुसी लै के बहना जी बह जाओ, बिल्कुल मैं तैयार हूँ तो तुसी भी रहना तैयार। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो दिल से दिल तक।

12 बज के 22 मिनट इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम होम स्वीट होम और मैं पहले किया देखो ये प्रोग्राम सारियां दे नाल जुड़िया होया है सो कर दी साम संभाल देखो असी गल कर लिए है ना जी किवें आपा थोड़ा जा चेंज कर लिए मौसम दे अकॉर्डिंग करना ही चाहिए और हुण आपा छोटे बच्चों की थोड़ी गल करिए क्योंकि हर एक मैंबर उस घर का बहुत जरूरी है और उन्होंने नाल आपा कि कुछ मतलब किदा गलबात करते हैं अच्कल आप देखिए बच्चों से कि कुछ चेंज आ गया है ना क्योंकि जो आप छोटे होंगे सानू इन्नी सहूलत नहीं मिलिया सी उदो फोन भी नहीं होंगे सी और एक दूजे नाल खेडना गली दे विच यही साडा एक फन हुंदा सी मनोरंजन हुंदा सी है ना मनोरंजन के नाम पर मैं गल कर रही हाँ लेकिन अच्कल के बच्चों के कोल तो किन्नी ही ज़्यादा मतलब चीज़ा ने गैजट्स कह लो है ना या फिर होर भी तरीके दे ने सो बहुत जरूरी हो जाता उस टाइम पर कि बच्चों के विच ना स्टार्टिंग तो ही शुरुआत तो ही एक जिहड़ियां चंगियां आदतां ने ना वो आपां लैके आईए क्योंकि कई बार बच्चा किसी के सामने भी कुछ गलत बोल जाता है कुछ गलत कह जाता है स्कूल्स के विच बच्चे जा रहे हैं उत्थे वधिया तो सीखते हैं लेकिन कई बार टीचर की शिकायत आ जाती है कि जी तुहाडे बच्चे ने अजिहा किया इस बच्चे नाल या मैनू ही गलत बोलिया है ना सो बहुत जरूरी है कि बच्चों के विच आपां चंगियां आदतां जरूर उन्होंने बारे सोचिए कि शुरुआत तो ही आपा की कर रहे हैं तो उहदा जिहड़ा असर है उस बच्चे ते उस छोटे बच्चे ते की कुछ बह रहा है क्योंकि देखो बच्चा सानू देख के ही चीज़ां फॉलो कर रहा है जे असी मोबाइल ते लगे हुए हैं ना एज पेरेंट तो बच्चा देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा तो मोबाइल ते लगे हैं तो फिर मेरे नाल तो कोई खेड ही नहीं रहा गल ही नहीं कर रहा है ना तो उन्हें भी ऑटोमैटिकली फोन ते ही लगना जिद करनी है फिर जेकर असा आपा उहदे नाल तू तड़ाक नाल गल कर रहे हैं ना जी असी अपना गुस्सा उस टाइम पर सानू पता ही लगता कि असी बच्चे नाल किवें गल कर रहे हैं तो उस चीज़ नू वो देखता है सीखता है फॉलो करता है तो फिर जब कल नू साडे नाल बच्चा इस तरह गल करेगा तो ऑब्वियसली ना ये रिएक्शन ही होएगा उस चीज़ का सो बहुत जरूरी है कुछ दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स कि आप बच्चों लिए की कुछ खास कर सकते हैं किवें उन्होंने बच्चे देखो एक चंगी आदतों का विकास कर सकते हैं गल करांगे थोड़े नाल इस प्रोग्राम दे विच होम स्वीट होम दे विच फिलहाल जॉर्डन संधु कह रहे हैं मेरी आवाज़ सुन लो उस तो बाद मैं खुद आ रहा है ये गल सुनने लिए कि आप कुछ खास कर सकते हैं बच्चों के लिए स्टे ट्यून्ड

गाने गा के गड्डी चला के जाके बाजार, जद लौकी तू लाएगा ला ला ला, लौकी नू पील करेगा ला ला ला। उस तो बाद लौकी पील करके, यानी कि लौकी नू पहला वॉश करना है, वॉश करके सुखा के चंगी तरह उस लौकी नू उदे जड़े छिलके ने ना वो ला देने जी, पील कर देना है। और उदे बाद उसते आपा टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, लौकी का टुकड़ा टुकड़ा कर देना है जनाब। कोई भी आप स्पाइलाइजर यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली चाकू होंगे ने जूलियन, है ना, जूलियंस कर लेने लौकी दे, उन जिन्होंने समझ आ गया जूलियन की चीज़ किस बला का नाम है जूलियन करना, लौकी का जूलियन कर रहे हैं आप। हाँ, सो ये जेटे जूलियन कर सकते आप, पिलर होंगे वो थ्रू, जिमें नूडल्स की शेप है ना, नूडल्स लंबे लंबे होंगे, लौकी दे भी आप जूलियंस कर देने जी, पिलर के नाल या चाकू के नाल नूडल्स की शेप देनी है। ओके, उस तो बात करना की है जिहड़ियां आपां सब्जियां दा नाम

मैं तो दी गुलाबी जिहड़े की अपने पिंक पिंक लिप्स की गल बात कर रही थी। ये गुलाबी आंखें पता नहीं कितों आ गया। वैसे जो भी हो गाना वधिया सी, गाना एंजॉय करे सी तुसी प्रोग्राम होम स्वीट होम। और इस प्रोग्राम नूं हुण अज इत्थे टाटा बाय बाय करन दा दिल रे रे रे टाइम आ गया है। दिल तां मेरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुहाडे नाल जुड़ी हुई हाँ जी दोपहर दे 2 बजे तक। ठीक है, अगला प्रोग्राम ला के बस कुछ ही वलां च हाजिर हो रही हाँ। उदों तक होम स्वीट होम दे विच ई वाला गीत आया है, बड़ा ही सोहना गीत है। चलो इंजॉय करदे हां जी मिलके दिल से दिल तक।

एक्चुअली होना की है, होना तो फिर प्यार ही है, जब तो समझना है ना कि अरे रे रे रे क्या हुआ, तो फिर समझ लो प्यार हुआ। सो तेरी एक नज़र ने सारे अरमान जगा दिए, बातों बातों में दिल के तार मिला दिए, हंसी तेरी सुन के धड़कन तेज हो जाती है, खामोशी में भी तू याद आती है, नींद उड़ी और देखो रात भी उसकी हो गई, हर दुआ में अब बस उसकी ही आरजू रह गई। कहना तो था बहुत कुछ और लफ्ज कम पड़ गए, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया।

तेरे हुस्न के चर्चे हर महफिल में आए और दिल के कोने में बस तेरी ही तो धड़कन है। लोग पूछते हैं आजकल खामोश क्यों है, कैसे बताऊं कि तेरी आंखों में खो गए हैं हम। नाम ना आए जुबान पर इस डर से सांस भी अब धीमे धीमे लेने लगे हैं हम। इस दुनिया की नजरों से दूर प्यार होने के बाद चलो फिर उन नजरों से बचते हुए कहीं दूर चले जाएं हम।

देखिए तुसी कदे कोई मुरझाई हुई कोई परेशानी वाली तस्वीर, क्योंकि तस्वीरां तां हमेशा खुश ही हुंदियां ने, जिंदा हुंदियां ने और साडियां यादां नूं जिंदा कर जांदियां ने। इस करके एक सोहनी जी तस्वीर अपनी समय ते मतलब टाइम टू टाइम लेना बहुत जरूरी है ना। तस्वीरां लैनियां चाहीदियां ने, ये सानूं जिंदा रखदियां ने। और अगला गीत भी कुछ यही कह रहा है कि जिहड़ी जिंदगी है ना, ये सानू हसन गाउन दे लई ही मिली है। इस करके तस्वीरां लैंदे रहो और इस जिंदगी नू इसी तरह इंजॉय करते रहो। स्टे ट्यून्ड।

मैं पहले ही कहा सी कि ये जिहड़े दो पल होंदे ने ना जिंदगी दे, वैसे दो नहीं, चार, छे, दस, पंद्रह, भी जिन्हें भी पल ने एक दिन दे विच या उस जिंदगी दे विच, उन्हें दे विच हसना गाना है ना, मुस्कुराना ही चाहिदा है। टेंशन्स आ जाइया ने, परेशानियां आ जाइया ने, पर फिर की होया, जिंदगी तुहानू लैके जा रही है जी, नवे नवे राहां ते लैके जा रही है, नवे नवे सुपने तुहानू दिखा रही है, तो फिर खुश रहो और जिंदगी दे नाल नाल झूमो, इंजॉय करो, गीत गाओ।

0: गम की सदा कौन सुने।
1: FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हाँ। हुण तो कुछ ही पलां च तुसीं साडे प्रदेशिक चैनल तो पंजाबी च खबरां सुणोगे।

सो कल नु की होएगा की नहीं ए मैनू भी नहीं पता, लेकिन हाँ आज दोपहर ठीक 2 बजे की होएगा प्रोग्राम। अगला पेश होएगा जी दिल आज शायर है, और वो प्रोग्राम तुसी अगले दोस्त नाल इंजॉय करोगे। ते आज दी इस जर्नी दे विच, सफर दे विच, सिलसिले दे विच मैनू रिचा नू दियो जी इजाजत। मेरा भी थोड़ा साथ आज इतने तक ही सी, लेकिन बहुत जल्दी हाजिर होंगी एक दिन फिर किसी दिन होर एफएम रेनबो दे, और बहुत सारिया चीज़ा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लैके। उम्मीद कर दी कि आज का सफ़र जोड़ा सी तुहानू भी वधिया लग्या होएगा, और वाकई जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, तो चलते चलते चलते चलते ही जाइए, है ना जी। चलते चलते थोड़ा जहा ध्यान नाल चलिए, मैं भी चल रही हूँ, तुम भी चलो। चलते चलते तुम अगले प्रोग्राम वाल पहुँचोगे, तो मैं जावांगी जी अपने होर काम करने लई। सो इंजॉय करते रहो, स्माइल करते रहो, तो सुनते रहो खुशियां का खजाना बनता लाइव वीडियो स्टेशन 102.7 FM रेनबो, दिल से दिल तक।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर

0: वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: 102.7 मेगाहर्ट्ज़ से आकाशवाणी जलंधर 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले FM रेनबो चैनल दे नाल जुड़े हुए हैं। हुणे दोस्त प्रोग्राम सुन रहे सी मिड डे मेलोडीज़ अपने आरजे दोस्त रिचा दे नाल। रेनबो की घड़ी के मुताबक इस वेले दोपहर के 2 बजन जा रहे हैं। हुण तो कुछ ही पलों च तुसी सुनोगे प्रोग्राम दिल आज शायर है।
1: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਠ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ FM

प्यार परी नमस्कार सत श्री अकाल आदाब स्वागत करदा जी तुहाडा सारयां दा तुहाडे अपने मनपसंदीदा प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच। मैं तुहाडा दोस्त तुहाडा अज दा हमसफर बिपन सुमन। कहिंदे ने जिथे एहसास शब्द बन जांदे ने ते शब्द शायरी बनदी है ते शायरी नूं मिल जांदा है सुरां दी खूबसूरत संगत ते ओह बनदा है प्रोग्राम दिल आज शायर है। तुसी भी अपनी शायरी साडे वट्सएप नंबर ते भेज सकदे हो जी। चुनिया हुई शायरियां असी तुहाडी आवाज़ नूं अपनी आवाज़ दे जरिए इस पूरी दुनिया तक पहुँचावांगे ते उन्हां दे नाल जुड़िया होया कोई ना कोई खूबसूरत पंजाबी गीत या गज़ल भी तुहाडे वास्ते पेश करांगे। सो अज दे इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं ऐसे गीत दे नाल जो बीते हुए लम्हे की मिठी चुभन नूं बहुत ही सोहणे ढंग नाल बयान कर रहा है। लिख रहा है कि काश फिर वो मौसम फिर वो सवेरे आवण, काश फिर वो मौसम फिर वो सवेरे आवण, दिल दे वेड़े विच फिर वो चेहरे आवण, वक्त तां लंघ गया यादां नहीं मुकदियां, काश काश किते वो बीते वेले मुड़ आवण, काश किते वो बीते वेले

કાશ કે તેઓ વીતે વેળે મોડાવણ, સો કાશ જેડા ના સિર્ફ કાશ તા કિસી મત રહે ચાંદા હૈ, ના ઓ વીતે વેળે મોડાઉંદે ને, ના ગયે હોય લોક. પર ઇસ દા મતલબ એ નહીં હૈ કે અસી દુખી હો જઈએ, ઇસ દા મતલબ એ હૈ કે અસી ઉના દે નાલ બિતાઈ હોઈ હર એક લમ્હે નું યાદ કરીએ ઓર મુસ્કુરાઈએ કે ઓ લમ્હે સિર્ફ મેરે લઈ સન. चलो जी, गल्लां बातां दा सफर इसी तरह जारी रहेगा. प्रोग्राम दिल आज शायर है दे विच, ते जेकर तुसी अपनी शायरी इस प्रोग्राम च अजे तक नहीं भेजी तां तुसी वी अपनी शायरी नूं पहुंचदा कर सकदे हो. दिल दे हालात, जज्बात, अल्फाज बना के मेरे तक भेज सकदे हो. नंबर 9855101027, यानी कि 9855101027. सो बहुत सारे दोस्तों की साढ़े तक शायरी पहुँच चुकी है. पहली शायरी साढ़े तक आई है जी, साढ़े दोस्त ने राम स्वरूप अरोड़ा जी, चौंक छेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो. इन्हां दी शायरी मैं थोड़ी बाद च पढ़ांगा, मैनू ज़्यादा इंटरस्टिंग लगी. पर पहला शायरी पढ़ते हैं जी, बलविंदर सरा पिंड मौड़जंड सिखा हनुमानगढ़ तो. प्यार भरी सत श्री अकाल कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि चाहते थे हम भी जिंदगी खुशी से जीना, चाहते थे हम भी जिंदगी खुशी से जीना, पर किस्मत वहाँ हमें बेवफा होकर निकल गई. कर रहे थे इंतज़ार बेबसी से जिसका, बिना बताए ही हमें छोड़कर दूसरे शहर चली गई. ते बलविंदर जी, दूसरे शहर भला केड़ी बस रेल गड्डी जहाज नहीं जाता, तुम टिकट फड़ो चल जाओ, तुम भी टेंशन केड़ी है. सो थैंक यू सो मच शायरी भेजने लिए. और अगली शायरी ते नहीं, पर साढ़े दोस्त ने बस एक फोटो भेजी है जी, एक काइंड ऑफ एक कोट ही है साढ़े दोस्त ने जी, अमरजीत जसल प्रेम मार्केट बठिंडा तो, कि मैं सारा दिन लपदा रहा बीते कल नूं ते शाम हुंदे हुंदे मेरा अज भी चला गया. एक विचार है, पर दोस्त अगे गुजारिश है जी कि जेकर तुसी शायरी भेजो इस प्रोग्राम दे विच तां ही इसका असल मकसद सार्थक हो पाएगा. लेकिन थैंक यू जी, तुसी अपनी शायरी साढ़े तक जां विचार ही अपना साढ़े तक पहुँचता कीता, शुक्रिया जी. अगली शायरी है जी राम स्वरूप अरोड़ा जी की, चौंक छेलियाँ सुल्तानपुर लोधी तो. की लिख रहे ने, कहंदे कि समंदर क्या किसी की प्यास बुझाएगा. तुसी सोच सकते हो जी कि समंदर भी अगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता तो वह इंसान किस हद तक अपने विचारां दे विच गमगीन होएगा. लिख रहे ने कि समंदर क्या किसी की प्यास बुझाएगा, ये खारा पानी दिल को और जलाएगा. कि जिसे समझते थे हम सुकून का किनारा, जिसे समझते थे हम सुकून का किनारा, वही लहर बनकर हमें डुबाएगा. मोहब्बत में वफा की उम्मीद कैसी, मोहब्बत में वफा की उम्मीद कैसी, यहाँ हर शख्स एक दिन आजमाएगा. और जो मोहब्बत में जला है वही समझेगा इसे, जो मोहब्बत में जला है वही समझेगा इसे, ये किस्सा हर किसी को कहाँ समझ आएगा.

FM बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी जलंधर, 103.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी अमृतसर ते न्यूज़ ऑन AIR दे जरिए दोस्त इस वेले जुड़े हुए ने FM रेनबो चैनल दे नाल ते चल रहा प्रोग्राम दिल आज शायर है। अगली शायरी साढ़े तक आन पहुंची है जी, भेजी है साढ़े दोस्त मुहम्मद मुजफ्फर मुहम्मद अरमान पेंट खुरद जिला मलेरकोटला तो लिख रहे ने परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तलक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत ही पते की गल साढ़े दोस्तों ने साढ़े तक पहुँच दी की है, थैंक यू सो मच जी। और अगली शायरी वाल रुख कर दें जी, गुरु नानकपुरा बठिंडा पंजाब तो किशोर सबलानिया जी ने नाल सावित्री सबलानिया सुमन सबलानिया और बेटी अंशु की लिख रहे हैं कि आपकी याद आए तो हम क्या करें। आप याद कर लिया कीजिए कि आपकी याद आए तो हम क्या करें, या दिल से ना जाए तो हम क्या करें, सोचता हूँ मुलाकात होगी सपने में, सोचता हूँ मुलाकात होगी सपने में, अब नींद ही ना आए तो हम क्या करें।

जे समंदर ना होवे ता किश्ती किस काम दी, जे समंदर ना होवे ता किश्ती किस काम दी, जे जिंदगी दे विच मजाक ना होवे ता मस्ती किस काम दी। कुर्बान हो जिंदगी अपने दोस्तां दे उपर, कुर्बान हो जिंदगी अपने दोस्तां दे उपर, जे तुहाडे वर्गे दोस्त ना हो ता दोस्ती किस काम दी। मैं भी यही पूछना चाहुंना जी, किस काम दी। लेकिन ये शायरी जी साढ़े तक भेजी है जी, लोहा बाजार मलेरकोटला तो राकेश कुमार जी ने भेजी है। शुक्रिया जी राकेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। अगे वध्दिआं जी, अगली शायरी आई है जी गुरजीत मान जी दी बठिंडा तो। की लिख रहे ने जनाब? गला थोड़ा जा सुरच कर लिए क्योंकि शायरी बहुत सोहनी है। कहिंदे मेरी जिंदगी दी बुझी हुई रात नूं चार चन लगाऊंगा, मेरी जिंदगी दी बुझी हुई रात नूं चार चन लगाऊंगा, जद कोई मेरे बारे लिखूगा नाल तेरा नाम जरूर आऊगा, यादां दियां राहां ते तुरदे नाल, यादां दियां राहां ते तुरदे नाल आ के हत्थां विच हाथ पाऊंगा, जद कोई मेरे बारे लिखू नाल तेरा नाम जरूर आऊगा। कि किवें मिले किवें विछड़े सारी कहानी अपनी सुनाऊंगा, ते ओ इंसान रोंदा जाऊगा जद कोई मेरे बारे लिखू नाल तेरा नाम जरूर आऊगा। सो सचमुच दे विच जदों कोई इंज करदा है तां नाम जरूर आंदा है, ते जदों नाम आंदा है तां फिर इस सारी मुलाकात नूं जगजीत ते चित्रा जी इस गज़ल दे विच किवें बयान कर रहे ने, आओ सुनते हैं।

0: जी दोस्तों, हुण समां हो गया साडे स्पोंसर प्रोग्राम उमंग दा। आओ सुनते हैं।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
3: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
1: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाकसे दोनों आँखों से नेत्रहीन हूँ। प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
3: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
3: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
1: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी

0: सभ्यता थी। ये विमलेश जी आपको बताना होगा, तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं, कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था, फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था, फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था श्रोताओं। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूं विमलेश जी, और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी?
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही है।

0: ऋतिक रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
1: नाना जी।
2: अरे ऋतिक
3: रश्मि भाई आओ। कैसी रही चौपाल?
1: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
4: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
5: नाना जी
4: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
1: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
3: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
4: ये लो नानी जी भी आ गई।
6: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
3: अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं, मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
6: हाँ वो तो है।
1: नानी हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
6: अच्छा तो ये बात है, तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
3: अच्छा चलो भाई चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
1: कहाँ से आया है?
3: भाई शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
1: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
3: बहुत अच्छे बहुत अच्छे। भाई मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
4: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
3: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
1: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
3: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
1: नाना जी मानसूनी पवन कैसे बनती है?
3: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है, वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
1: अच्छा नाना जी।
3: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
1: अच्छा।
3: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
1: अब समझ में आया। नाना जी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
3: देखो भाई यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
6: और बच्चों भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
3: हाँ।
6: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
3: बिल्कुल।
6: और हाँ हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
1: अच्छा।
6: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
1: अच्छी अर्थव्यवस्था।
6: हाँ।
3: बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला साहित्य त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
4: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का

0: सबसे सुंदर चित्रण है।
1: ओ।
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रानंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
2: भाई इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए
3: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
1: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव। और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम, शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

0: स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते। एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है।

0: ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
1: मेरा नाम राजू है, मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे, पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
0: अच्छा?
1: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
0: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो, अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
1: अच्छा।
2: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्र नाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्र नाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
0: महाशय,
3: हाँ?
0: कोई बात नहीं
3: है?
0: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
2: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
0: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
0: मुझसे शिवलिंग टूट गया, ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
0: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
0: माँ,
2: बाल्यकाल से ही नरेंद्र नाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्र नाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्र नाथ तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
2: नरेंद्र नाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्र नाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूं, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
2: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को देखा

0: वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
1: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
2: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
1: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूं, तुमसे बात ही कर रहा हूं। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूं।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्र नाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
2: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

0: इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था। फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं,

0: भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा ना कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
1: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। मैं अनुराधा, स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, जोड़ों का दर्द केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी व्यक्ति को थका देता है। तो कैसे इस दिक्कत से आपको निजात मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो विषय हम चुनकर लाए हैं वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी रोबोटिक जोड़ प्रत्यारोपण। इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107। तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें और कॉल करें। आपके सवालों का समाधान करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रॉमा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब का स्वागत करें, उससे पहले ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में हमारा जो आज का विषय है वो है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इस विषय पर हम बहुत बेहतर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि इस समय जो मौसम है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये समस्याएं जो हैं इस मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कैसे हम इस पर काबू पा सकते हैं, ये सब चर्चा हम ज़रूर करेंगे। लेकिन एक गीत और सुन लें फिर।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: जी हाँ, साथ साथ चलते हुए हम वहाँ पर आ गए हैं जहाँ हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और पूरी तरह से अपना जीवन जो आप हैं वो सुचारू रूप से चला सकें। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं आज रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट क्या है और इसकी ज़रूरत कब और किस स्थिति में पड़ती है?
1: मेरे श्रोताओं को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी
1: ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि आजकल बहुत जिज्ञासा श्रोताओं के मन में होती है कि आखिर ये रोबोटिक सर्जरी क्या है। ऐसा है कि सर्जन बाहर बैठा रहता है और रोबोट अंदर जाके ऑपरेशन कर देता है,
0: जी।
1: तो रोबोटिक सर्जरी ठीक उसी तरह से है जिस तरह से आपकी बिल्कुल नई जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं उनमें GPS लगा है या लेन मैनेजमेंट लगा है या लेन पार्किंग लगा है, ऑटोमेटिक पार्किंग लगा है। ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी जो है किसी भी सर्जरी में यूज की जा सकती है, लेकिन इसको हम आजकल सारी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में प्रैक्टिकली यूज करने की संभावनाएं बन रही हैं, पर अभी जो प्रैक्टिकली है जो नी रिप्लेसमेंट है जिसमें पार्शल और टोटल नी दोनों इंक्लूडेड है, और हिप रिप्लेसमेंट खास करके हिप रिप्लेसमेंट और पार्शल नी रिप्लेसमेंट में इसका बड़ा अच्छा योगदान है क्योंकि इन दोनों में कॉम्प्लिकेशन रेट काफी और फेलियर रेट काफी कम किया जा सकता है। तो किसी भी व्यक्ति जिसको ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत है उसकी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट आज की तारीख में रोबोट से भी की जा सकती है।
0: जी डॉक्टर साहब, पारंपरिक जो सर्जरी है उससे ये किस तरह से अलग मानी जा सकती है?
1: वो कई तरह से अलग है, जैसे कि आप अब जैसे GPS यूज करते हैं तो आपको चाहे रास्ता आता है लेकिन आपको गूगल बता देता है कि यहाँ पे ट्रैफिक है या यहाँ पे कोई कॉशन है, यहाँ पे कोई वार्निंग है। तो जो पहली बात तो ये है कि एक हमारा मानना है आजकल कि हर व्यक्ति अलग होता है, तो किसी का घुटना बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी पे कोई एंगल है, किसी पे कोई एंगल है। तो जो एक पर्सनलाइज्ड जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको कहे, जो व्यक्ति विशेष के लिए ही टेलर्ड हो, ऐसी सर्जरी सिर्फ रोबोट से संभव है। जबकि आपकी टांग में जो नेचुरल कर्व है वो हर व्यक्ति में अलग होता है, तो उस की जो है एनाटॉमी जो हम कंप्यूटर से देख के या रजिस्ट्रेशन करके उसको प्रिसाइजली उनकी जैसी घुटने की बनावट है उस तरह का विशेष तरीके से जॉइंट रिप्लेसमेंट उस अलाइनमेंट में उनका किया जा सकता है। दूसरी बात है प्रिसीशन है, तो एक रोबोट जो है वो इतना प्रिसाइज है कि 0.1 मिलीमीटर तक की डेविएशन नहीं देना चाहता। मैं आपको देता, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे कोई एक कंपोनेंट 2 डिग्री में डालना है तो वो पारंपरिक तरीके से संभव नहीं है, लेकिन रोबोट वो कर सकता है। तीसरे जो टिश्यू है उनकी प्रोटेक्शन होती है, अगर रोबोट ने एक लाइन लगा दी तो उसके बाद अगर मैं हाथ में रोबोट को लेके पुश भी करूं तो उस बाउंड्री के बाहर नहीं काटेगा, तो टिश्यूज की सुरक्षा इससे सुनिश्चित होती है। और ये भी होता है कि क्योंकि इसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कम होती है, रिलीफ कम होते हैं, तो इसमें दर्द कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है।
0: जी बहुत सारे फायदे हैं डॉक्टर साहब, आपसे आगे भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक गीत यहाँ सुन लेते हैं, आगे के सवाल इसके बाद।

जी हाँ, काली घटाओं की बात तो सुनिए, लेकिन हमारी बात भी ज़रूर सुनिए और गौर भी कीजिए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, जो एक आम समस्या है। हमें ये पता है कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, इसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर

0: राजेश मल्होत्रा जी। डॉक्टर साहब, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ चुके हैं। सागर साहब का ये मैसेज है विजयपुरा कर्नाटका से। ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं बाद में, क्या उनको जोड़ों की समस्या हो सकती है, या अर्थराइटिस की जिनको समस्या है, क्या रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए काम करता है?
1: जी, तो सागर जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो लोग बहुत ज्यादा जिम करते हैं, मैराथन करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, जिसमें कंटैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें घुटने में इंजरी होने की संभावना होती है, तो ये ध्यान रहे कि जब चोट लगती है जिस घुटने में, उस घुटने में जो डिजेनरेशन की प्रक्रिया है, जो उसके खराब होने की प्रक्रिया है, उसकी दर थोड़ी तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स में जॉइंट जल्दी खराब होते हैं। और बिल्कुल अगर किसी को आर्थराइटिस है तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट उनके लिए बिल्कुल सूटेबल है, और बल्कि बहुत तरीके से कन्वेंशनल से बेटर है। जैसे कि अगर किसी के हिप जॉइंट बहुत ज्यादा खराब है, टांग छोटी लंबी है, तो उसमें जितना प्रिसीजन से रोबोटिक हिप रिप्लेसमेंट से सर्जरी की जा सकती है वो मुश्किल है पारंपरिक तरीके से, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो जी, हर तरह की, जैसे मैंने पहले कहा, सर्जरी को रोबोटिक से किया जा सकता है। कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जो पारंपरिक रूप से की जा सकती है, लेकिन रोबोट से नहीं की जा सकती है। लेकिन उसकी एक एक्सपेंस है, उसका एक खर्चा है, और उससे जो उसका एक ड्रॉबैक है वो यही है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है।
0: जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और लोगों के मन में होता है कि ये सर्जरी कितनी टिकाऊ होगी, क्योंकि लोगों को आम तौर पर आदत हो जाती है पारंपरिक जो चीज़ें हैं उनको अपनाने की, तो ये जानना चाहूँगी मैं आपसे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल हर किसी के जहन में आता है कि अगर हम आज ऑपरेशन करा रहे हैं तो वो कितनी देर चलेगा। तो मैं आपको इसके दो भाग में इसका उत्तर दूंगा। पहला भाग तो ये है कि जैसे घुटना है उसको हम औसतन कहते हैं कि 20 साल चलता है, तो 20 का मतलब कुछ में 18, कुछ में 22, ये इस तरह से एवरेज या औसत हम कह सकते हैं कि घुटने की है। लेकिन जहां तक कूल्हे का सवाल है, जो कि ज्यादातर और युवाओं में बदला जाता है, सब में इसमें बदला जाता है, क्योंकि उसकी बीमारियां या तो युवावस्था में होती हैं या बिल्कुल बुढ़ापे में जाके होती हैं जब आपका कूल्हा टूट जाता है। तो आज की डेट में 25 से 30 साल जो है वो कूल्हा आराम से आपको सर्विस देता है, और जो नए वाले डिजाइन है वो बहुत अच्छे हैं, और उनमें आज की डेट में, जैसे हम लोग एक सोसाइटी के मेंबर हैं, मैं इंटरनेशनल हिप सोसाइटी का मेंबर हूं, तो उसमें पिछले साल जब हम लोग ग्रीस में मिले तो हमने डिसाइड किया कि एक 50 साल के व्यक्ति को ये कहा जा सकता है कि आज अगर आप कूल्हा चेंज करवा रहे हो तो वो आपको सारी जिंदगी चलेगा
0: जी।
1: तो ये एज पे डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे, यूज पे डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, एवरेज जो हम कह सकते हैं, जो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपको इतना दिन चलेगा।
0: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज आया हुआ है अनमोल गुप्ता जी का, सरिता विहार दिल्ली से। ये लिख रहे हैं कि मैं 45 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, एक्सरसाइज करते हैं ये साइकिल चलाकर, तो ये जो एक्सरसाइज है इनके लिए लाभदायक है क्या, या किसी के लिए भी लाभदायक हो सकती है? जी
1: जी जी, साइकिल का ये रहता है कि जो एक्सरसाइज वाली साइकिल है, जिसको हम अगर जीरो रेजिस्टेंस पे या फ्री करके चलाएं और सीट को जितना ऊंचा कर सकते हैं उतना करके चलाएं और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह से उसका मूवमेंट करें, तो जैसे 15 मिनट फॉरवर्ड तो 5 मिनट बैकवर्ड, तो उससे इनकी काफी लाभ होता है। जो दूसरी आउटडोर वाली साइकिल है उसमें क्योंकि हम पुश करते हैं, तो अगर आपको घुटनों की तकलीफ है तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है।
0: जी, तो थोड़ी सावधानियां जरूर बरतनी है जो कि डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं। अगला मैसेज हमारे पास है सरोज मल्होत्रा जी का, साकेत मेरठ से। ये लिख रही हैं कि डॉक्टर साहब, रिप्लेसमेंट ना हो, इसके बचने के लिए कोई उपाय बताएं। दूसरा सवाल इनका ये है कि इनकी सिस्टर को रिप्लेसमेंट बता दिया गया है तो उनको डर लगता है, थोड़ा सा ये जानना चाहती हैं विस्तार से कि कोई समस्या ना हो अगर वो रिप्लेसमेंट कराती हैं तो क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं।
1: तो पहली बात तो ये है कि अगर आप घुटनों के रिप्लेसमेंट से बचना चाहते तो सबसे पहले अपना वजन नियंत्रण में रखें। सबसे बड़ा कारण जो घुटने घिसने का है वो वजन है, और आज की डेट में हमारे पास 35-40 साल के लोग आते हैं जिनके घुटने पूरी तरह से घिस चुके हैं क्योंकि उनका वजन बहुत ज्यादा है।

0: दूसरी बात है इस तरह की एक्टिविटीज करना जिनसे घुटना डैमेज होता है। अब फ्लैट कल्चर हो गया है, लिफ्ट नहीं है, तो लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो याद रखें कि सीढ़ी चढ़ते हुए अपने वजन का 10 गुना वजन आपके घुटनों पे पड़ता है। इसी तरह जमीन पे बैठना, अलती पलती मारना, इंडियन टॉयलेट यूज करना, बहुत ज्यादा 15 मंजिल से ज्यादा रोज सीढ़ी चढ़ना या 10 किलोमीटर से ज्यादा रोज चलना, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपका वजन ज्यादा है, वीएटी ज्यादा है, इंजरी है। कुछ लोगों को, लेडीज को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर आपको थायराइड है तो उसका नियंत्रण होना चाहिए। अगर आपकी मदर को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपको घुटने घिसने का अंदेशा ज्यादा है। तो इन सब को अपना लाइफस्टाइल आप चेंज करके, अपना वजन कम करके, अपनी मांसपेशियों को स्वस्थ रख के, उनकी लगातार व्यायाम करके, उनको स्ट्रांग करके रखें और घुटना डैमेज करने वाली एक्टिविटीज को कम रखें तो आप उस घुटने को चला सकती हैं। जहां तक आपकी सिस्टर का सवाल है, देखिए हम घुटना बदलने के लिए तब बोलते हैं जब आपका दर्द इतना ज्यादा है कि आपको लगातार दर्द की दवाई खाने की जरूरत पड़ रही है, आप चल नहीं पा रहे हैं, आप ज्यादा देर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आती है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो गई है, जीवन की गुणवत्ता पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो गई है कि आप मंदिर जाना चाहें, शादी में जाना चाहें या घूमने जाना चाहें तो नहीं जा सकते, तो ऐसे में उस घुटने से बाकी जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर डॉक्टर ने उनको सर्जरी बताया है तो जाहिर है कि उनके घुटने पूरी तरह गिर चुके होंगे, तो अगर वो उसको जबरदस्ती उसके साथ खींचेंगी तो कई बार वो और भी कॉम्प्लिकेशंस को लीड करता है। तो अगर आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, और अगर आपको कुछ संशय है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। कोई भी, मैं भी माइंड नहीं करता कि अगर मेरा पेशेंट मेरी दी हुई एडवाइस को किसी और से पूछना चाहता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। आपका ये हक है कि आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, अगर आप उसको दूसरे से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है तो उसको बहुत ज्यादा तक आप टाल नहीं पाते हैं। अक्सर लोग उसको पोस्टपोन कर पाते हैं, अवॉइड नहीं कर पाते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब सुनने में ये भी आता है कि अगर ज्यादा डिले किया जाए तो उम्र बढ़ने के साथ और भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, जहां सर्जरी कराना भी मुश्किल होता है। जी
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा अक्सर हमारे पास होता है कि लोग इतना डिले कर देते हैं कि कुछ हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हम ही लोग कहते हैं कि अब आपके लिए सेफ है, नहीं आप मत कराइए। दूसरे हम पेशेंट से एक ही बात पूछते हैं, आप क्या इस घुटने के साथ सारा जीवन निकाल लोगे? लेकिन याद रहे ये वायरल बुखार नहीं है जो अपने आप ठीक हो जाएगा, ये समय के साथ बढ़ेगा। आप चलना बंद कर दोगे तो ये बैठे बैठे भी दर्द करेगा, अगर आप दर्द की दवा खाओगे तो आपकी किडनी डैमेज होगी, और आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करके, चलना फिरना बंद करके, पेन किलर खा के अगर आप अपने जीवन को बिताने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को छोटा ही कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने। डॉक्टर साहब जैसा कि इन्होंने लिखा कि इनको डर लग रहा है तो लेकिन ये समस्या ना हो, पहले कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इंश्योर किया जाता है मरीज को जिससे वो दिक्कत में ना आए, तो टेस्ट कौन कौन से पहले होते हैं?
0: जी पहली बात तो यह, अगर मरीज मुझे आके बोलते हैं कि डर लग रहा है तो मैं उनसे कहता हूँ कि लगता है आपकी तकलीफ जो है वो आपके डर से कम है। जिस दिन आपकी तकलीफ आपके डर से ज्यादा हो जाएगी तो आप खुद मान जाएंगे ऑपरेशन के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर ऑपरेशन सेफ नहीं है तो आपके डॉक्टर ही नहीं करेंगे, ये एक टीम का काम होता है, उसके अंदर एनेस्थेटिस्ट होता है, उसके अंदर फिजिशियन होता है, उसके अंदर कार्डियोलॉजिस्ट होता है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपकी शुगर बहुत साल से बहुत खराब है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होता है, तो एक टीम होती है जो पहले ये निर्धारित करती है कि आप ऑपरेशन के लिए फिट हैं कि नहीं, और दूसरी बात इस समय फिट है कि नहीं। बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम कहते हैं जाइए पहले शुगर कंट्रोल करके आइए, आपका HbA1c जो है वो 7.2 कई जगह 7.5 बट हम 7.2 कहते हैं, इससे कम होना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना चाहिए, आपका थायराइड कंट्रोल होना चाहिए, ये कोई इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं है। देखिए ये नियम तो सेम है चाहे आप रोबोटिक कराएं, कंप्यूटर से कराएं या पारंपरिक तरीके से कराएं, लेकिन ये एक इलेक्टिव ऑपरेशन है जिसको प्लानिंग के साथ किया जाता है, इसलिए हम कोई भी एडिशनल रिस्क नहीं लेते हैं और मरीज को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही अपने सारे विशेषज्ञों से ये निर्धारित कराते हैं कि कब उपयुक्त समय रहेगा जब आपकी फिटनेस मैक्सिमम होगी और आपको कोई भी रिस्क होने की संभावना मिनिमम रहेगी।
1: जी डॉक्टर साहब एक ये भी बात होती है कि हम पहले ही मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये दिक्कत हो सकती है, हमें उससे पहले फायदे जानने की जरूरत होती है, जैसा कि कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में ब्लड लॉस कम होता है, क्या ये सच्चाई है?
0: जी कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर से करते हैं या रोबोट से करते हैं तो उस समय

0: पे हम लोग कुछ स्टेप होते हैं, जैसे पारंपरिक में हम लोग फीमर की कैनाल खोलते हैं
1: जी
0: और उसमें जिग डालते हैं, तो ब्लड लॉस इसमें कम होता है। ब्लड लॉस इसलिए भी कम होता है कि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम करने पड़ते हैं। तो जी बिल्कुल सही है, ब्लड लॉस कम होता है, दर्द कम होता है और अर्ली रिकवरी फास्ट होती है, जबकि कुछ लिटरेचर ये कहता है कि 6 महीने के बाद उसमें कोई अंतर नहीं होता दोनों कैटेगरीज में, लेकिन अर्ली रिकवरी में डेफिनेटली फास्ट होने का एविडेंस है, पेन कम होने का एविडेंस है, ब्लड लॉस कम होने का एविडेंस।
1: जी और डॉक्टर साहब, समय कितना लगता है सर्जरी पूरी होने में और कितने समय तक हॉस्पिटल में रखा जाता है मरीज को?
0: तो आपका पहला सवाल तो ऐसे है कि जैसे आपने पूछा कि आकाशवाणी भवन से कनॉट प्लेस जाने में कितना समय लगता है, कि
1: जी
0: आपकी कौन सी गाड़ी है, कैसा ड्राइवर है, कितना ट्रैफिक है बाहर,
1: जी
0: लेकिन औसतन ये सर्जरी 30 से 35 मिनट में खत्म हो जाती है। और हॉस्पिटलाइजेशन टिपिकली 5 दिन का होता है, 1 दिन पहले एडमिट किया जाता है, उस सेपरेट टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस देखी जाती है, अगले दिन ऑपरेशन किया जाता है। अधिकतर हम लोग ऑपरेशन वाले दिन ही पेशेंट को बेड से निकाल के खड़ा करते हैं, चेयर में बिठाते हैं और चलाते हैं, और 24 घंटे बाद उनको सीढ़ियां चढ़वाया जाता है, वॉशरूम भेजा जाता है, और 10 से 14 दिन तक वो वॉकर यूज कर सकते हैं और 10 से 14 दिन तक स्टिक। हालांकि कुछ हमारे मोटिवेटेड और युवा जिनको कहें जो सिर्फ 60-65 साल के ही हैं, वो लोग पहले हफ्ते में ही स्टिक के बिना भी चलना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, रिकवरी एक बहुत ही इंडिविजुअलाइज चीज है, हर एक व्यक्ति का अपना मेंटल मेकअप होता है, अपना मोटिवेशन होता है, लेकिन अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच में रेपो है, उनके बीच में समन्वय है, एक दूसरे की बात समझते हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, तो रिकवरी में कोई परेशानी नहीं होती है।
1: जी तो कहने का मतलब श्रोताओं यहाँ पर यह है कि पूरे विश्वास के साथ आप सर्जरी करवा सकते हैं, ज़रूरत है थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की, जो कि डॉक्टर साहब आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह का ध्यान आपको भी रखना है। सीढ़ियाँ चढ़ना ज़रूरी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, जैसा कि एहतियात डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो ज़रूर ध्यान में रखिए। साइकिल भी आप एक्सरसाइज के दौरान चला सकते हैं लेकिन उसका भी डॉक्टर साहब ने बताया है कि किस तरह से क्या नियम होना चाहिए। डॉक्टर साहब, और क्या क्या एहतियात हैं जो गलतफहमी में लोग करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन उससे दिक्कतें बढ़ सकती हैं, अगर कोई समस्या है तो क्या कहना चाहेंगे?
0: तो एक तो स्क्वाटिंग जो है, स्क्वाट्स, जिम वाले स्क्वाट्स बहुत कराते हैं। दूसरे, बहुत लोग मैंने देखा कि काफी एज तक, खास करके जो ज्यादा एज वाले जिनको बचपन से ही इंडियन टॉयलेट या भारतीय शैली के शौचालय को इस्तेमाल करने की आदत है, वो एक चीज है जो घुटनों के लिए अच्छी नहीं है। अब हमारे यहाँ सब पूजा पाठ जमीन पे बैठ के किया जाता है, आलती पालती मार के किया जाता है, आप जरूर करें, लेकिन अगर आपको घुटनों की तकलीफ शुरू हो गई है तो जमीन पे बैठना और आलती पालती मारना पूर्णतया बंद करने की कोशिश करें, क्योंकि उनसे भी नुकसान होता है। इसी तरह से जो सीढ़ियां जहां जरूरी है वहां चढ़े। देखिए, 3 चीजें हैं जिनसे घुटने में नुकसान नहीं होता है। एक होता है सैर करना, वॉकिंग। कई बार हम देखते हैं कि किसी फिजियोथेरेपिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने बोल दिया आप चले ना 15 दिन, तो ऐसा कोई इलाज मुझे मालूम नहीं अपने पूरे करियर में जो ऑर्थोपेडिक्स में जिसमें पेशेंट को चलने से मना किया जाए। तो पहले तो वो गलत है अगर आपको ये बोला जाए कि आप चलिए मत। दूसरा, तैरना, जो लोग स्विमिंग जानते हैं, तैरना जानते हैं, तैराकी जानते हैं, उनके लिए इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं है। लेकिन जिन लोग, जो लोग तैरना नहीं जानते हैं लेकिन उनको पूल की सुविधा है, उनके स्विमिंग पूल उनकी कॉलोनी में या उनकी सोसाइटी में है, तो शैलो एंड पे कमर तक पानी में चलना उनके लिए, घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और तीसरा, जैसे अभी कुछ देर पहले बात हुई कि अगर एक्सरसाइज वाली साइकिल को 0 रेजिस्टेंस पे फ्री करके चलाया जाए, जो 15 मिनट सामने की तरफ और 5 मिनट पीछे की तरफ, तो वो भी घुटनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। चलने से भगवान ने हमें 2 टांगे दी चलने के लिए, चलने से कभी भी घुटनों में डैमेज नहीं होता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको घुटनों की तकलीफ बड़ी हो तो आपको चलने में दर्द हो, तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन ये कभी ना सोचे कि चलने से मेरे घुटने डैमेज हो जाएंगे।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण आपसे जानकारी मिल रही है डॉक्टर साहब। यहाँ पर अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आगे की बातें।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ श्रोताओ, आज हम चर्चा कर रहे हैं रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट पर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी। और आपके जो भी सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और लगातार आप कर भी रहे हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070।
2: अनुराधा जी, मैं कुछ कहूँ?
1: जरूर सर।
2: तो जैसे आपने पिछला गाना बहुत खूबसूरत गीत चलाया, हाँ। जीने की तुमसे वजह मिल गई है। अगर जीवन में कुछ वजह है, जीने की वजह है, तो सबसे पहले अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखें
1: जी,
2: तो वो आपके और आपकी वजह दोनों के काम आए
1: जी। बहुत खूबसूरत बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है श्रोताओं, और इस बात को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जीवन तभी खूबसूरत होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। और लगातार हम यही कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप स्वस्थ रहें, और उसके लिए लगातार डॉक्टर साहब आपको बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। एक हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत

0: स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्ते मैडम, मैं रघुवीर
0: नमस्कार
1: जी उत्तराखंड से बोल रहे हैं।
0: जी, बताएं सर, क्या सवाल है आपका?
1: एक मैडम ऐसा है कि डॉक्टर साहब नमस्कार,
2: नमस्कार जी।
1: एक कमर में अक्सर दर्द रहता है बहुत, मतलब वेस्ट वेस्ट मतलब कमर में ना,
2: जी
1: वेस्ट बोलते हैं सर ना,
2: जी
1: तो कमर में अक्सर दर्द रहता है। जैसे कभी मैं पैदल चलता हूँ तो जब मैं घर आता हूँ तो ज्यादा दर्द होने लगता है, तो ये जो है आगे जाके कुछ और परेशान करेगा सर, मैं यही पूछना चाहता हूँ।
2: देखिए, ऐसा है कि कोई भी कमर का दर्द, आपको ये मैं बता दूं कि कमर का दर्द दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है। पहली है जुकाम। तो हर जीवित व्यक्ति जीवन में कम से कम एक बार कमर दर्द को जरूर झेलता है। तो कमर दर्द कई तरह के होते हैं, कुछ खतरनाक नहीं होते हैं, कुछ खतरनाक भी होते हैं। तो हम लोगों के पास कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जिनसे हम ये पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमर दर्द जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। आपने कुछ भारी वज़न उठा लिया या आप ज़्यादा देर कोई कार ड्राइव कर लिया, जैसे मैंने घुटनों के लिए कहा, अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसका असर भी आपकी कमर पर होता है। और एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें कि आपका बैलेंस डाइट है, वजन ठीक है, आप व्यायाम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो उसमें आपकी कमर भी स्वस्थ रहती है। लेकिन कोई भी दर्द कमर का अगर आपको 5 से 7 दिन से ज़्यादा चलता है, सुबह उठ के उसमें आपको कमर में अकड़न लगती है, आपका दर्द टांग में जाता है, आपको कोई पैर में कमजोरी लगती है, कुछ झंझनाहट लगती है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि वो आपका पूर्ण रूप से निरीक्षण करके आपको ठीक से एडवाइस कर सके।
0: जी,
1: ठीक है सर,
0: तो यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान हो गया है। डॉक्टर साहब, हम लगातार आज चर्चा कर रहे हैं और लोगों को मार्गदर्शन आप दे रहे हैं। क्या कोई एक ऐसा मौसम भी होता है जिसमें रिप्लेसमेंट आराम से करवाया जा सकता है, या किसी मौसम में भी, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, लोग थोड़ा सा घबराते हैं, क्या
2: बहुत
0: सलाह देना
2: अच्छा
0: चाहेंगे?
2: सवाल है।
0: जी
2: देखिए, मैं इसका जवाब हमेशा, ऐसे सवाल हम रोज़ सुनते हैं,
0: जी
2: तो मैं ये कहता हूँ, जिस व्यक्ति को डर लगता है और जो कराना नहीं चाहता है, वो गर्मियों में पसीना आता है उसको, सर्दी में उसको ठंड लगती है,
0: जी
2: बरसात में उसको लगता है कि घाव खराब हो जाएगा, उस हिसाब से पूरे साल में उनको कोई अच्छा समय नहीं मिलेगा। हमारे अस्पताल पूरा साल भरे रहते हैं और पूरे साल ऑपरेशन होते हैं, तो मौसम का इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, जोड़ों का दर्द जैसे है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, अचानक बरसात होती है या ठंड पड़ती है, तो जोड़ों का दर्द ज़रूर मौसम से प्रभावित होता है और वो दर्द उन दिनों में बढ़ जाते हैं। लेकिन आपके प्रश्न का छोटा उत्तर है कि जी नहीं, ऐसा कोई मौसम नहीं है जो इसके लिए बहुत अच्छा है या इसके लिए बहुत ख़राब है।
0: जी तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर साहब बराबर आपको ये बता रहे हैं कि कोई भी समस्या है तो आप पूरा समाधान ले सकते हैं डॉक्टरी सलाह से। डॉक्टर साहब, हमारे पास कृष्णा जी का रायपुर से मैसेज आया हुआ है, लिख रही हैं, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार भेजा है इन्होंने, मुझे
2: नमस्कार
0: भी
2: कृष्णा
0: भेजा
2: जी।
0: है। जी, ये लिख रही हैं कि मेरी जिज्ञासा है कि 45+ मेरी बहन के दाहिने एल्बो में एक्सीडेंट के बाद स्टील प्लेट लगा है, क्या उसे लाइफ टाइम रखते हैं तो कुछ हानि तो नहीं होगी? इनका दूसरा सवाल है कि मेरे स्टील के नकली दांत लगे हैं, उसे लेकर भ्रम में लोग डालकर कहते हैं कि ऐसे में EMR या कोई जांच है जिसे नहीं करवाना चाहिए, करंट से जान चली जाती है, क्या ऐसा होता है? थोड़ा मार्गदर्शन
2: पहले तो ये बता दूं कि MRI में करंट नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है।
0: जी
2: तो उसमें जो अगर कई धातु की चीज़ें होती हैं जिनसे MRI इसके कंपैटिबल नहीं होती हैं। तो दांत के बारे में तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में चोट लगने पर जितनी भी प्लेट या नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट, जितने भी इम्प्लांट ऑर्थोपेडिक सर्जन आपकी बॉडी में डालते हैं, वो सब MRI कंपैटिबल होते हैं, आप निश्चिंत रहें। और अगर आपके जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है और आपको MRI वाले पूछते, तो कहना कि डॉक्टर मल्होत्रा ने हमें रेडियो प्रोग्राम पे बताया था, अनुराधा जी भी गवाह थी,
0: जी
2: कि ऐसा में कोई रुकावट नहीं होती है MRI कराने।
0: जी डॉक्टर साहब, किन परिस्थितियों में ये तय किया जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट ही आखिरी विकल्प है?
2: जी, तो मैंने इसका उत्तर थोड़ी देर पहले दिया। अगर आप दर्द के बिना और दर्द की दवाई खाए बिना आधा घंटा खड़े नहीं हो सकते हैं, आधा घंटा चल नहीं सकते हैं, आधा किलोमीटर चल नहीं सकते हैं, सप्ताह में एक बार से ज़्यादा आपको दर्द की गोली खानी पड़ती है, दर्द से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो गई है, तो आप इन घुटनों या कूल्हा या कंधे, जो भी आपके जोड़ आपको तंग कर रहे हैं, उन

0: से आपको, खास करके ये घुटने और कूल्हे के लिए, क्योंकि मैंने चलने की बात कही, तो आपका घुटना खराब हो चुका है, कूल्हा खराब हो चुका है, तो मोटे तौर पे तीन चीज़ें, आप चल फिर कितना सकते हैं, आपको दर्द कितना होता है, और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन की गुणवत्ता पे इसका कितना प्रभाव पड़ा है, उससे आप ही को डिसाइड करना है। आपके डॉक्टर को ये बातें नहीं मालूम है। अगर आप मैनेज कर रहे हैं बिना पेन किलर खाए और अपना काम काज सुचारू रूप से करके, बिना अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब किए, तो मैनेज करिए, लेकिन इन सब के साथ जीना अपने आप को एक प्रताड़ना देने वाली बात है।
1: जी, नी की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ये भी देखा जाता है कि एक ही घुटने का सर्जरी की जाती है, क्या दोनों घुटने की सर्जरी पॉसिबल है अगर मरीज करवाना चाहे?
0: तो हमने एक आर्टिकल इसमें इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल में पिछले साल छापा था, और हमने ये बताया था कि किन लोगों को दोनों घुटने चेंज किए जा सकते हैं, किन को एक समय पे एक ही करना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ।
1: जी
0: जब आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे विदेश में 75 कहते हैं, पर हमारे यहाँ हम 70 कहते हैं, क्योंकि हमारा जो अमेरिकन के मुकाबले में औसतन स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है, अगर किसी को डायबिटीज़ भी है और उसकी एज भी ज़्यादा है, अगर किसी को कोई भी मेजर बॉडी की इलनेस है, या उनके एक ही घुटने में मेनली तकलीफ है, हमारा नियम यह है, अगर आपके ज्यादा खराब वाले घुटने में 100 पैसे दर्द है और दूसरे में 60 पैसे से कम है, तो आपको एक ही कराना चाहिए।
1: जी
0: और अगर पेशेंट हमें कहता है कि हमें दोनों कराने हैं, तो हम ये देखते हैं कि उनके दोनों खराब हैं कि नहीं, और फिर हम अपने कार्डियोलॉजिस्ट से और एनेस्थेटिस्ट से बात करते हैं, और ये देखते हैं कि उनमें कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको दोनों करना सेफ नहीं है, तो हम नहीं करते हैं, समझा के एक टाइम पे एक ही करते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, क्या लागत आती है अगर कोई एक आम इंसान कराना चाहे?
0: तो जोड़ों की कीमत तो प्रधानमंत्री जी ने तय कर दी है, वो तो कवर्ड है, तो वो तकरीबन 60,000 में नी रिप्लेसमेंट आता है, और करीब 1.5 लाख में कूल्हे का जो बेसिक, एक 35 से 1.5 लाख तक में कूल्हा आ जाता है। और बाकी आप जिस अस्पताल में करा रहे हैं उनका पैकेज होता है, जो कि इम्प्लांट के अलावा कहीं भी मतलब 1.5 से लेके 2.5-3 लाख तक पैकेज होता है उसका।
1: जी, रोबोटिक जॉइंट प्लेसमेंट के बाद किस तरह की सावधानी की जरूरत होती है?
0: तो रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सिर्फ एक तरीका है। तो मैं पेशेंट से ये कहता हूँ, जब वो पूछते हैं कि हम रोबोटिक कराएं कि नहीं, तो मैं उनसे कहता हूँ, देखिए आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, गाड़ी आपकी है, मैं आपका ड्राइवर हूँ, आप मुझे मर्सिडीज़ देंगे तो मैं मर्सिडीज़ में ले जाऊँगा, आप मुझे होंडा देंगे तो होंडा में ले जाऊँगा, या आप मुझे मारुति देंगे तो मारुति में ले जाऊँगा। मेरा काम है आपको सेफली पहुँचाना, चाहे आप मुझसे पारंपरिक तरीके से कराएं या रोबोटिक से कराएं। उसी तरह से जब एक बार सर्जरी हो गई, तो रोबोटिक और नॉन रोबोटिक में, कोई पोस्ट ऑपरेटिव में, रिहैबिलिटेशन में, एक्सरसाइज में कोई अंतर नहीं है।
1: जी, तो श्रोताओं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। यदि आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें कॉल करें, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम है और आप अपने सवाल हमसे तुरंत कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर से 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे की बात।
0: जी।

0: डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है मेरे मन में कि कौन सी स्थितियां होती हैं या इन्फेक्शंस होते हैं जिनके दौरान रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट को डिले किया जाता है?
1: जी, चाहे रोबोटिक हो या पारंपरिक हो, कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट उस समय पे नहीं करना चाहिए जब आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन का फोकस हो। खास करके हम डायबिटिक्स में देखते हैं और लेडीज़ में कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होती है। तो अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन है, तो उसका पूरी तरह से उसको क्योर करके ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। और ये भी बात याद रखें कि भले ही चाहे वो कोई आर्टिफिशियल जॉइंट, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, या कोई स्टेंट हो, हार्ट वॉल्व हो, कोई भी अगर आर्टिफिशियल चीज़ आपकी बॉडी में है, तो कोई भी इन्फेक्शन होने पे तुरंत उस इन्फेक्शन का इलाज होना चाहिए ताकि वो जो आर्टिफिशियल इम्प्लांट आपकी बॉडी में है उसमें वो इन्फेक्शन नहीं पहुंच जाए। तो इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। शंट में, न्यूरोलॉजी के शंट होते हैं, वॉल्व होते हैं, उन सब में खास करके ध्यान रखना
0: जी।
1: चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, शुभ नाम बताएं अपना।
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार जी,
2: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ।
0: जी,
2: तो सर दो तीन क्वेरीज है। जैसे मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो ड्राइव करने का टेल बोर में बड़ा पेन फील करता हूँ। दूसरा, मैंने ये सुना है जैसे ज्यादा चलने से कि हमारे घुटने में कार्टिलेज, जिसे हम ग्रीस भी बोलते हैं, वो क्या कम हो जाती है ऐसे कुछ?
1: जी, बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ठंड में जो हमारे अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो हल्का सा जम जाता है, प्लस मांसपेशियां भी ठंड में कुछ अकड़ जाती है। तो सर्दियों में, कुछ देर पहले भी मैंने बताया कि जोड़ों का दर्द जो है वो बढ़ जाता है, हमारी नर्व भी थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जब हमें कोई चोट लगती है, आपने देखा होगा कि सर्दियों में ज़्यादा दर्द करती है, क्योंकि जब हमें चोट लगती है और जो केमिकल निकलते हैं जो दर्द करते हैं, वो गर्मियों में ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है स्किन में, तो उसको बहा के ले जाती है तो दर्द कम होता है। सर्दी में हम हीट कंजर्व करते हैं तो स्किन में कम हीट पहुंचती है, ब्लड सर्कुलेशन कम पहुंचता है, तो वो केमिकल ज़्यादा देर तक दर्द करते हैं। और जब हम प्रिकॉशंस बताते हैं घुटने के लिए, तो हम ये बताते हैं, मैं आपको एक आसान तरीके से समझाता हूँ। घुटने के अंदर फ्लूइड होता है, जब पानी एक जगह खड़ा हो जाता है तो बदबू मारता है। उसी तरह अगर आप बहुत घंटों तक अपने घुटने को नहीं हिलाएंगे तो वही हालत होगी जैसे कि पानी रुकने से होती है, क्योंकि तब केमिकल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर आपको उठ के 4-5 कदम चलना पड़ता है, अपने आप को, टांग को हिलाना पड़ता है, और वो फ्लूइड जब सर्कुलेट हो जाता है उसमें वो केमिकल्स की मात्रा कम हो जाती है, तो ये ठीक हो जाता है। तो चलते रहे, चलाते रहे, जोड़ आपके चलायमान रहेंगे तो दर्द नहीं करेंगे।
0: जी, तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने बहुत गौर से सुना होगा और उसे इस तरह से अपनाएंगे कि उनके जीवन की दिक्कतें जो हैं जोड़ों से, दर्द से जुड़ी हुई, वो तमाम समस्याएं खत्म हो जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत
1: धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: जी श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर राजेश मल्होत्रा जी, ट्रामा फॉर्मर चीफ JPN एपेक्स ट्रामा सेंटर एंड प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एम्स।

0: दिल्ली, और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम को आपने सुनकर पूरी तरह से लाभ लिया होगा। आपको बता दें कि अगर आप अपना फीडबैक हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी है health@aird.com। अपना सुझाव प्रतिक्रिया हमें इस पर भेज सकते हैं health@aird.com। तो सुनते रहिए कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

गांव वालों, बसंती को समझाओ, आजकल वो मेरी नहीं सुनती, सारा दिन एफएम रेनबो सुनती रहती है। ऑल डे लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग। गांव वालों, अब मैं जा रहा हूँ एफएम रेनबो लाने। मां कसम, सुनते रहिए 102.7 एफएम रेन।

जी मेरे रंग में रंगने वाली और वालों, जो भी होंगे आज के मेरे सवाल, आप दोगे उन सवालों के जवाब। इसलिए लगाया मैंने ये वाला ख्वाब, सॉरी राइमिंग बनानी सी ना, सो इस करके राइमिंग तो नहीं बनी, चलो मैं फिर ख्वाब ही वर्ड यूज़ कर लिया। सो दोस्तों अज का प्रोग्राम होने वाला है जी बहुत ही खास, हर बार की तरह। सो इस प्रोग्राम दे विच जेकर तुसी चाहते हो तुहाडी होवे शिरकत, तां तुसी एक छोटा जिहा टास्क करना है जी। मैं सवाल तुहाडे वास्ते लैके आवांगा, मजाकिया सवाल लॉजिक दे नाल कहिंदे ने, सो वो वाले सवाल तुहाडे कोलों पुछे जाणगे जी। जेकर चाहते हो तुसी कि तुहाडी इस प्रोग्राम दे विच फरमाइश की जाए पूरी, तो तुसी सानू कॉल करनी है जी 0181 2342174। इस नंबर के उपर कॉल करके तुसी अपनी फरमाइश साझी कर सकते हो, तो मेरे थोड़े जहे मुश्किल थोड़े जहे आसान सवालों के जवाब भी दे सकते हो जी। सो आओ फिर देखते हैं जी कि दोस्त अज दिमागी कसरत करके आए हैं। सो गैट रेडी।